0: एशियन गेम्स 2026 के अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
2: एशियन गेम्स की ताजा अपडेट्स के साथ हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं शौर्य चौधरी। नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड व्हाट अ गोल्डन मॉर्निंग इट हैज बीन शौर्य। और ये सुबह, ये स्वर्णिम सुबह आई है भारतीय महिला कंपाउंड आर्चरी टीम की बदौलत, तो उसके बारे में और दिन अभी तक जो जो कुछ हो चुका है, जो मेडल्स, जो खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है, उन सब का अपडेट हम आपको देंगे एक एक करके। तो शुरुआत करते हैं उस स्वर्णिम सफलता से। चिकिता तानिपार्थी, प्रतिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम की भारतीय तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में चीन को 238 और 234 से हराया। भारत का स्कोर रहा 238, चीन का 234। 238 का जो स्कोर है वो साउथ कोरिया के साथ जॉइंट वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और इसके साथ ही लगातार दो एशियन गेम्स में इस इवेंट में गोल्ड जीता है भारत ने। और इस जीत के साथ इस एशियन गेम्स में भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या हो गई है 7। इसके पहले आज सुबह ही सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को हराया था भारत ने। वहीं कंपाउंड मिक्स टीम के सेमीफाइनल में चिकिता तानिपार्थी और साहिल जाधव ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है, जहां उनका मुकाबला रिपब्लिक ऑफ कोरिया से होगा। और इसके बाद होगा कंपाउंड मेंस टीम सेमीफाइनल, जिसमें कुशाल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम की टिकड़ी दिखाई देगी। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि इन तीनों ही इवेंट्स में भारत डिफेंडिंग चैंपियन भी है।
3: एब्सोल्युटली, एंड एक्चुअली इंडिया टेकिंग ऑन कोरिया राइट नाउ एज वी go through this update, and it's a brilliant final that's going on right now. India doing really well, so another goal probably loading in compound mixed team. So in compound archery, obviously India are a powerhouse, and as you rightly pointed out, three goals up for grabs, and we are the defending champions in all three. So today is looking up since the morning for India. Right now, as we can see, India have shot perfect 10s till now on 80, while Korea are struggling a little bit, they're on 78. Meanwhile, also in squash, the women have reached the semi-finals by defeating Singapore, so another medal loading. There's a very important day today for India, action-packed day, as you rightly pointed out, and we also have LA qualification up for grabs. As we all know, compound mixed team will be making its debut at the Los Angeles Olympics, and whoever wins this match goes through directly as qualifiers for that prestigious Olympics debut. So many things are for grabs here right now.
2: जी, सफलताओं की बात हम कर रहे हैं तो ट्रैप मिक्स टीम के इवेंट में भी केनन चेन्नई और नीरू ढांडा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। वहीं मेंस कयाक सिंगल में प्रद्युम्न सिंह राठौर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। हितेश केवट नहीं कर पाई, वो 14वें स्थान पर रहे। वहीं महिलाओं की कैनो सिंगल में पल्लवी जगताप 8वें स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। रीना सेन 9वें स्थान पर रही और क्वालिफाई नहीं कर पाई।
3: एंड रेसलिंग एक्शन हैज आल्सो बिगन, as we all know, and again India are a powerhouse in wrestling, and some of the results that have come in we can tell you right now, and we are doing really well in wrestling as well. Sunil Kumar, of course, he began with a victory in his category, but

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: 10:03 स्टूडियो के घड़ी में वक्त, मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ 107.9 FM रेनबो दिल से दिल तक पर कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। और आज नॉनस्टॉप गपशप में हम बात करेंगे शान की, शान से। और शान से शान की बात करने की वजह यह है कि आज 30 सितंबर को शान का है जन्मदिन, तो हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारी सभी श्रोताओं की तरफ से शान को ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। और चूंकि आज उनका बर्थडे है तो गीत तो उनके ही बजेंगे, तो रुक करते हैं गीतों की और नॉनस्टॉप गपशप पर बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखेगा, लेकिन साथ में गीत तो बजते रहेंगे। तो कार्यक्रम का पहला गीत बिल्कुल तैयार आप सबके लिए, सुनते रहिए, साथ रहिए।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

बज के 15 मिनट स्टूडियो की घड़ी में वक्त मैं सुष्मिता आप सबके साथ 107 यहां यानी एफएम रेनबो दिल से दिल तक कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप काफी टाइम हो गया है और एक ऐसा जा रहा है आपका दिन बेहद अच्छा जाता होगा इसी उम्मीद के साथ रुक करते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज है शान का जन्मदिन तो क्योंकि अब बात उनकी हो रही है गीत उनके हो रहे हैं और शान की

मुस्कान अगर आप याद करें तो बस अपने आप अपने चेहरे पर स्माइल आ जाती है कि नहीं। और आज तो हमारी महफिल ही बस ये है शान के नाम से, तो क्यों ना आज उनके जन्मदिन के दिन उन्हीं के सभी गीत गाए जाएं और सुनवाए जाएं, है ना। आज हम उस आवाज को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिन्होंने अपनी सुरीली और युवा आवाज से हिंदी फिल्म संगीत को एक अलग पहचान दी। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है गायक शान की। 30 सितंबर 1972 को जन्मी शान की असली नाम इनका जो है शांतनु मुखर्जी है। संगीत उनके परिवार में ही है, उनके रगों में ही है। उनके पिता मानस मुखर्जी संगीतकार थे और उनकी बहन सागर भी जो है एक एक गायिका है। शान ने हिंदी के साथ साथ कई भाषाओं के गीतों में अपनी आवाज दी है, लेकिन मैं तो आपको बस हिंदी गीत ही सुनाऊंगी और आपके सामने प्रस्तुत है बैक टू बैक और दो गीत जिसकी आवाज शान की ही है। सुनते हैं इन गीतों को।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

0: नंबर 26 आईजी नगोया।
1: A triumphant good morning to all our listeners to our daily updates of the 20th Asian Games being held at Aichi Nagoya in Japan. You're with Shaurya Chaudhary and Mudita. And India has made it 2-2 in compound archery today with Sahil Jadhav and trailblazing youngster Chakita, fresh off her women's compound team world record and gold medal, beating the Haifangel South Korean pair Yonggyeon Park and Yonghee Choi in a tense shoot-off after the two teams finished tied at 157 after the fourth end in the final, and they have won gold. And by virtue of this fantastic victory, the Indian pair have qualified directly for the LA Games, where compound archery will be making its debut through the mixed team event. So great news, 2-2. मुदिता
2: बिल्कुल, और हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर से बता दें कि इससे पहले आज सुबह महिला कंपाउंड आर्चरी टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। चिकिता तनिपार्थी, प्रतिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम की भारतीय टिकनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में चीन को हराया था। और अब से कुछ ही देर में कंपाउंड मेन्स टीम

0: के सेमीफाइनल भी शुरू होने वाले हैं। अगली खबर मुक्केबाजी से है। बॉक्सिंग के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। अभी फिलहाल प्रिया घनघस का मुकाबला चीन की चेंगयू यान के साथ जारी है और इसके बाद लवलीना बोरगोहेन सामना करेंगी कजाकिस्तान की बोगदानोवा नतालिया का। और वहीं पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में कपिल पोखरिया मुकाबला करेंगे तुराबेक हबीबुल्लाएव उज्बेकिस्तान के जो मुक्केबाज हैं उनका।
1: यस, लवलीना बोरगोहेन सेलिब्रेटेड डेकोरेटेड बॉक्सर एंड ओलंपिक मेडलिस्ट एंड बट देयर सम बैड न्यूज कमिंग फ्रॉम द टेनिस कोर्ट। दक्षिणेश्वर सुरेश, as you were saying in the previous update at 9:30, he was taking part in the third round in the men's singles. He has gone down to Chinese Taipei's Chun Xing Sheng 6-3, 6-4, but lots of other tennis action awaits us basically, because men's doubles quarterfinals are there. Yuki Bhamdi and Dakshineshwar Suresh will be in action there. And we know we won some medals in tennis last time as well in Hangzhou, and apart from shooting and obviously archery, we did pretty well in tennis as well. So let's see, there might be some medals up for grabs there, and hockey as well.
0: और टेनिस में ही अभी पुरुष सिंगल्स में तीसरे दौर का मुकाबला सुमित नागल का जारी है उज़्बेकिस्तान के सर्गे फोमिन के साथ। पहला सेट 1-1 से बराबरी पर चल रहा है।
1: एंड सुमित नागल इज ऑब्वियसली आवर बेस्ट सिंगल्स होप। ही वाज आल्सो देयर इन हंगझोउ एंड ही was doing pretty well before getting knocked out, but Sumit Nagal obviously is the celebrated tennis player from our contingent there. And obviously boxing, as you were saying, is very important, and there's also judo action going on and wrestling action as well, and these are also medal hopes for us. मुदिता
0: जी बिल्कुल, कुश्ती में मेंस ग्रेको रोमन 87 किलोग्राम भार वर्ग में सुनील कुमार सेमीफाइनल में हार गए, लेकिन उनका कांस्य पदक का मुकाबला शौर्य अभी बाकी है जहां वो फिर से पूरा जोर लगाएंगे। महिलाओं में 68 किलोग्राम भार वर्ग में निशा दहिया उत्तर कोरिया की पाक सोलगम से हार गई, लेकिन वो भी अभी कांस्य जीत सकती है, लेकिन उसके लिए पाक सोलगम को फाइनल में पहुंचना होगा।
1: पाक सोलगम हैज एक्चुअली एंटर्ड द फाइनल एंड that means there's a chance for a bronze medal there through repechage. Meanwhile, Priya Panghas is actually trailing right now. Let's see what happens. In judo, I think Ashmita has also lost in the quarterfinals. Action coming thick and fast. Lots of things happening here at Aichi Nagoya. But the good thing is India is moving up the medals tally.
0: जी बिल्कुल, मेडल्स टैली में भी भारत ने किया है। इसके अलावा कैनू स्लालम जैसे खेल में भी इतिहास रच रहे हैं। प्रद्युम्न सिंह जो है वो पुरुषों की कयाक सिंगल के फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं महिलाओं में पल्लवी जगताप विमेंस कैनू सिंगल के फाइनल में पहुंच गई हैं।
1: Great, but all our eyes will be on the hockey action later today as well. As you are also saying that compound men's team semi-finals are also going to take place today later in the day, and I think the final of the shooting trap will also be interesting, because you know India obviously is a powerhouse in shooting, and this time we haven't done as well as we did in Hangzhou, but a few more medals from shooting will obviously help us, you know, push up that medals tally.
0: बिल्कुल, और स्क्वाश में भी शौर्य हमने पदक पक्का किया है। भारत ने सिंगापुर पर जीत के साथ महिला टीम मेडल पक्का किया है। तन्वी खन्ना ने 3-1 से और अनाहत सिंह ने 3-0 से भारत को जीत दिलाई है। तो इसके साथ स्क्वाश में भी अब एक मेडल आना है। मेडल का रंग क्या होगा वो देखना बाकी है। बिल्कुल उसी
1: तरह हर बाउट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। आई थिंक शी इज ट्रेलिंग, बट लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। एज वी नो इन बॉक्सिंग, if we reach the semi finals you are assured of a bronze medal, so that way that's a good news for India there. And boxing and wrestling, these combat sports will obviously provide us with some medals and push us up that medals tally.
0: बिल्कुल, बॉक्सिंग से फिलहाल हमें वाकई मेडल्स की उम्मीद है। लवलीना का मुकाबला जहाँ चल रहा है हांगझोउ में, इसी कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था शौर्य, तो इस बार बिल्कुल वो मेडल का रंग बदलना चाहेंगी।
1: ऑफ कोर्स, एंड यू नो लवलीना इज अ नेम वी लुक अप टू दिस टाइम। ऑब्वियसली यू नो लवलीना इज रियली गियर्ड अप फॉर दिस एशियन गेम्स। शी हैज प्रिपेयर्ड रियली वेल एंड वी आर होपिंग फॉर दैट elusive gold medal. She won a silver, as you said lightly, in the last edition of the Asian Games in her category, and in the same category she's going to take part this time. She's already taking part, she's doing pretty well, she's in form, so we can obviously hope for a gold medal. So that's it for our update for 10:30. We'll be back at 11:30 a.m. for our next update. Lots more medal actions and lots more combat actions from the ring, so bringing that to you will be Mudita and Shaurya at 11:30 a.m. Till then, it's a goodbye. Keep cheering for Bharat.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

बातें हो रही है शान की 10:37 स्टूडियो की घड़ी में वक्त। शान के बारे में एक दिलचस्प बात पता है आपको कि शुरुआत में वह सिंगर बनने का सपना ही नहीं देखते थे। बहन सागरिका के साथ लाइव शोज में जाते थे और वहीं उन्हें गाने का मौका मिलने लगा और धीरे धीरे संगीत ही उनकी भी पहचान बन गई। शान ने 90 के दशक में इंडी पॉप दौर में अपनी खास जगह बनाई। तन्हा दिल, मुशु मुशु हंसी जैसे गानों ने, आवाज़ ने जैसे घर घर तक उन्हें पहुंचा दिया हो। अब बातें जब ऐसे गीतों की हो तो ऐसे गीत बिना सुने कैसे छोड़ सकते हैं, है ना? तो अगला दो गीत बिल्कुल तैयार आप सबके लिए, सुनते हैं तन्हा दिल और मुशु मुशु हंसी।

बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर।

0: एक चुटकी नुस्खे।
1: दोस्तों नॉनस्टॉप गपशप में अब वक्त है कि आपको कुछ नुस्खे दिए जाए। एक चुटकी नुस्खे में मैं सबसे पहले आपको जो नुस्खा देना चाहूंगी वो ये कि अगर दिन भर काम करके आप थकान महसूस करते हैं तो बीच बीच में जो है काम के बीच में थोड़ा सा अपनी जगह से उठें, थोड़ा हल्का सा इधर उधर चलें। लगातार लंबे समय तक बैठकर किसी काम को करने के बजाय अगर थोड़ी थोड़ी देर पर थोड़ा सा शरीर को सक्रिय रखा जाए तो ये अच्छा होता है। साथ में पानी तो पीना बहुत बेहद ज़रूरी है, वो तो आप पीते ही रहिए बस। और दोस्तों आज चुटकी भर नुस्खे में एक और नुस्खा आपको बताऊंगी, वो ये कि अगर आपको तो पता ही है कि डेंगू की समस्या जो है इस वक्त शहर में फैल रही है और जो है हमें खुद का ख्याल रखना होगा। अब सामने दुर्गा पूजा है और अपना अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। बीमार तो होना नहीं है क्योंकि मस्ती भी तो करनी है दुर्गा पूजा में, तो ऐसे में जो है अपना ख्याल बिल्कुल बहुत ज़्यादा रखिए। अगर आसपास कहीं पानी जमा है तो उसे हटाएं और कोशिश करें कि आसपास कहीं गमले में, कूलर में, बाल्टी में या फिर किसी भी बर्तन में थोड़ा सा भी पानी जमा ना हो। और कोशिश करें कि मच्छरदानी का उपयोग करें और जो है अगर कहीं ज़रूरी है अगर मच्छर आसपास दिखे तो जो है और भी जो भी साधन है जिससे हम मच्छर को भगा सकते हैं, हटा सकते हैं, खुद से दूर रख सकते हैं, उसकी कोशिश बिल्कुल करें। क्योंकि खुद की सावधानी, आपकी सावधानी सिर्फ आपको ही नहीं आसपास के लोगों को भी जो है सुरक्षित रखेगी। और कोशिश करिए कि अपने साथ साथ आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें, सफाई रखें, पानी जमने ना दे कहीं, और कोई अगर जमा रहा है उसे भी डांटे, है ना। 49 स्टूडियो की घड़ी में वक्त और सुन रहे हैं आप नॉन स्टॉप गपशप और गपशप तो चलती रहेगी, शान के बारे में बातें हो रही हैं और जो है गानों का सिलसिला भी रुकना नहीं चाहिए। तो अगला गाना बिल्कुल तैयार, सुनते हैं अगले गीत को। 107 AIR FM ट्रेन बो दिल से दिल तक पर।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: और कार्यक्रम के आखिरी गीत के साथ छोड़ जाती हूँ आपको, सुनते रहिए, साथ रहिए 107 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक पर। मैं सुचिश्मिता थी आप सबके साथ, कार्यक्रम नॉनस्टॉप के साथ बात हो रही थी आज शान की, और आखिरी गीत शान और सागरिका के आवाज में। इसी के साथ मैं लूंगी आप सबसे इजाजत।
2: कोई आप जैसा सनम, वो

0: did.
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
0: नमस्कार, एशियन गेम्स 2026 के सभी ताजा अपडेट्स और खबरें लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं शौर्य चौधरी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की शौर्य जो है वो मुक्केबाजी से आई है। लवलीना बोरगोहेन पहुंच गई हैं गोल्ड मेडल बाउट में। लवलीना ने महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की नतालिया बोगदानोवा को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हराया और इसके साथ ही उन्होंने अपना रजत पदक पक्का कर लिया है। लेकिन इस बार जो हमने पहले भी बात की थी कि वो मेडल का रंग जरूर बदलना चाहेंगी, हांगझोउ में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा बॉक्सिंग में ही प्रिया घनघस ने महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में प्रिया चीन की यांग चेंगयू से 1-4 के स्प्लिट डिसीजन से हार गई। बॉक्सिंग में एक मुकाबला अभी और होना है जो अगले अपडेट तक हम उसको लेकर के आएंगे, वो है 90 किलोग्राम भार वर्ग में पुरुषों का मुकाबला जिसमें कपिल पोखरिया नजर आएंगे।
2: एब्सोल्युटली, एंड दैट वाज अ वेरी टेंस बाउट देयर फॉर लवलीना। शी हैड टू रियली बैटल थ्रू इट एंड विन बाय स्प्लिट डिसीजन 3-2, एंड दैट शोज द चैंपियंस मेंटालिटी। यू सॉ दैट शी स्लिप्ड ट्वाइस ड्यूरिंग दैट बाउट। शी वाज डिफेंसिव एट मेनी जंक्चर्स, बट इन दैट फाइनल राउंड शी ब्रॉट आउट हर बेस्ट टू टेक केयर ऑफ अ वेरी स्ट्रांग ओपोनेंट। सो यस, सिल्वर मेडल अश्योर्ड, बट वी विल बी होपिंग फॉर अ गोल्ड। मीनवाइल

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: नमस्कार और स्वागत आप सभी का एशियन गेम्स 2026 की इस वक्त की ताजा अपडेट्स के साथ। मैं हूं मुदिता और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत एक और स्वर्ण पदक हासिल कर मेडल टैली में 8वें पायदान पर आ गया है। जी हां, शूटिंग में एक और स्वर्ण पदक हासिल किया है भारत ने। मिक्स टीम ट्रैप इवेंट में नीरू ढांडा और काइनन चिनाई की भारतीय जोड़ी ने फाइनल में कड़ी टक्कर दी। 34 हिट लगाकर फाइनल स्टैंडिंग में कतर और चीन से आगे टॉप पर रही। ट्रैप शूटिंग में ये भारत का तीसरा मेडल है। इससे पहले महिलाओं की टीम इवेंट में नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने सिल्वर और महिलाओं के इंडिविजुअल इवेंट में नीरू ढांडा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। और खास बात ये है श्रोताओं की इन तीनों मेडल्स में नीरू शामिल रही हैं। और इसके साथ ही भारत का ये सफल ट्रैप कैंपेन आज खत्म हो गया है। वहीं दूसरी खबर है हमारे पास आर्चरी से। मेंस कंपाउंड आर्चरी के फाइनल में भारत का मुकाबला चीन से जारी है। डिफेंडिंग चैंपियन भारत अपना खिताब बचाने की पुरजोर कोशिश में है। साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु और कुशल दलाल ने अब से कुछ देर पहले ही सेमीफाइनल में कोरिया पर 229 से जीत के साथ फाइनल में प्रवेश किया था। और हम आपको बता दें कि कंपाउंड आर्चरी में ही विमेंस टीम और मिक्स टीम इवेंट्स में डिफेंडिंग चैंपियन भारत आज स्वर्ण पदक जीत चुका है। मुकाबला जारी है और भारत इस इवेंट में भी अपने पदक को बरकरार रखने की पुरजोर कोशिश में है। इसके बाद बॉक्सिंग में कपिल पोखरिया का मुकाबला उज़्बेकिस्तान के तुराबेक खबीबुल्लाह के साथ चल रहा है। सेमीफाइनल मुकाबला है ये। और इसके पहले लवलीना पहुंच गई हैं गोल्ड मेडल बाउट में। लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में

0: कजाकिस्तान की नतालिया बोगदानोवा को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हराया था और इसके साथ ही उन्होंने अपना रजत पदक पक्का कर लिया है। लेकिन इस बार वो मेडल का रंग जरूर बदलना चाहेंगे क्योंकि हांगझाऊ में भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। प्रिया घनगस ने महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में प्रिया चीन की यांग चेंग यू से 1-4 के स्प्लिट डिसीजन से हार गई थी। स्क्वाश में मेंस टीम जो है वो क्वार्टर फाइनल में कुवैत के साथ मुकाबला कर रही थी। अभय सिंह ने अम्मार अल्तामिमी से 3-0 से मुकाबला जीता। वहीं वीर चोट्रानी बादेर अलमोगरेबी से 3-1 से मुकाबला जीत चुके हैं। इसके पहले महिला टीम आज क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर को हराकर पहले ही मेडल पक्का कर चुकी है। टेनिस की बात अगर हम करें तो सुमित नागल एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। राउंड ऑफ 16 में उज्बेकिस्तान के सरगेई फोमिन को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से उन्होंने हराया। फोमिन के खिलाफ इसके साथ ही उन्होंने अपना हेड टू हेड रिकॉर्ड 3-0 कर लिया है। मेडल पक्का करने से अब सुमित केवल एक जीत दूर है। पुरुष इसके पहले पुरुष सिंगल के तीसरे राउंड में दक्षिणेश्वर सुरेश चाइनीज ताइपे के चुन सेन सिंह से 3-6, 4-6 से हार गए थे। और वहीं मेंस डबल्स में अनिरुद्ध चंद्रशेखर और बालाजी की जोड़ी का मुकाबला जारी है। चीन के फ्यूमिंग जियांग और तियान हुई झांग से भारतीय जोड़ी पहला सेट 7-6 से जीत चुकी है और दूसरा सेट वो लीड कर रही है 4-3 से। स्पोर्ट क्लाइंबिंग में भारत के लिए एक और नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। दीपू मल्लेश गौड़ा ने स्पीड 4 क्वालिफिकेशन राउंड में 5.09 सेकंड के साथ नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया जो उनके पिछले 5:03.09 के रिकॉर्ड से बेहतर है। और उन्होंने इससे पहले का रिकॉर्ड इस साल की शुरुआत में चीन में वर्ल्ड क्लाइंबिंग एशियन चैंपियनशिप में बनाया था। जोगापूर्ति ने भी कल महिलाओं की स्पीड क्लाइंबिंग में 7:28 के समय के साथ नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। गोल्फ में सप्तक तलवार ने गोल्फ मेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले में अपने एशियन गेम्स 2026 कैंपेन की शुरुआत शानदार 4-66 के साथ की और राउंड वन के बाद तीसरे नंबर पर रहे जो जॉइंट लीडर्स से सिर्फ 1 स्ट्रोक पीछे थे। वहीं वीर अहलावत और युवराज संधु दोनों ने 1 ओवर 71 का कार्ड खेला और 23वें नंबर पर रहे। भारतीय गोल्फर 1 अक्टूबर को राउंड 2 के लिए वापसी करेंगे। और हमारी नजरें बनी हुई हैं आर्चरी के मुकाबले पर भी। बॉक्सिंग में हालांकि हार गए हैं भारतीय बॉक्सर कपिल पोखरिया उज्बेकिस्तान के तुराबे खबीबुल्लाएव के साथ। आर्चरी पे हमारी नजर बनी हुई है। इसके अलावा आने वाले मुकाबलों में अब हमारी नजर रहेगी विमेंस हॉकी के सेमीफाइनल पर भी। तो इस वक्त की अपडेट्स के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। ठीक 1:30 पर हम फिर से हाजिर होंगे नई और ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
2: कालो जोई बांग्ला गानेर धारा छुए जाक मोन सुनछेन गान दोरिया 107 FM रेनबो ते। गान दोरिया, गान दोरिया छुए जाक मोन, छुए जाक मोन।
3: নামটি আমার নদের চাঁদ মোল আ নাম

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: नमस्कार, एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट्स के साथ मैं हूं मुदिता और शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। भारत मेडल टैली में एक और पायदान ऊपर चढ़कर अब सातवें स्थान पर पहुंच गया है। एक और गोल्ड हासिल किया है भारत ने और खास बात यह है श्रोताओं कि आज का हर अपडेट हमने शुरू किया है गोल्ड के साथ, स्वर्णिम सफलताओं के साथ। तो मेडल टैली में भारत अब 10 गोल्ड, 21 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज के साथ कुल 59 पदकों के साथ सातवें स्थान पर है। शुरुआत करते हैं हम आज के इस वक्त के गोल्ड मेडल के साथ। भारतीय पुरुषों की कंपाउंड टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। साहिल जाधव, कुशल दलाल और टी गणेश मणिरत्नम की तिकड़ी ने फाइनल में चीन को 238-237 से हराया। पहले राउंड में भारतीय तीरंदाजों ने 2-9 लगाए थे लेकिन आखिरी 18 तीरों में परफेक्ट 10 स्कोर किया। इसके पहले सेमीफाइनल में कोरिया पर 236-229 से जीत के साथ फाइनल में भारत ने प्रवेश किया था और इस तरह कंपाउंड टीम इवेंट में भारत ने क्लीन स्वीप किया है जिसमें महिला टीम और मिक्स टीम के गोल्ड मेडल भी शामिल है। तो आज का दिन बेहद शानदार रहा है भारतीय तीरंदाजों के लिए, 3 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं उन्होंने। हम बता दें कि साहिल जाधव ने मिक्स टीम और पुरुष टीम में 2 स्वर्ण अपने नाम किए हैं। बॉक्सिंग में कपिल पोखरिया ने 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। सेमीफाइनल मुकाबले में कपिल उज्बेकिस्तान के तुराबेक हबीबुल्लायेव से हार गए लेकिन लवलीना पहुंच गई हैं गोल्ड मेडल बाउट में। लवलीना बरगोहेन ने महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की नतालिया बोगदानोवा को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हराया। इसके अलावा परवीन हुड्डा महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में चीन की ली शू को 5-0 से हराकर पहले ही फाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं। पुरुषों में अंकुश पंघाल 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो कम से कम 3 सिल्वर मेडल पक्के हैं बॉक्सिंग से, हालांकि हम बिल्कुल चाहेंगे कि मेडल का रंग सुनहरा ही हो। इसके अलावा प्रिया घनघस और नरेंद्र बेरवाल ने कांस्य पदक हासिल किए हैं। तो कपिल का कांस्य पदक मिलाकर कुल 3 कांस्य पदक भारत ने हासिल किए हैं बॉक्सिंग में। इसके बाद स्क्वाश में भी मेंस टीम ने अपना पदक पक्का कर लिया है। भारतीय टीम ने कतर को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अभय सिंह अम्मार अल्तामिमी से 3-0 से जीते, वहीं वीर चोटरानी बादेर अलमुगरेबी से 3-1 से जीत चुके हैं। महिला टीम आज सुबह ही क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर को हराकर पहले ही अपना मेडल पक्का कर चुकी है। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह सिंगल्स में रजत पदक पहले हासिल कर चुके हैं। टेनिस में मेंस डबल्स में अनिरुद्ध चंद्रशेखर और बालाजी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गई है चीन के फ्यूमन जियांग और तियान हुई झांग से। कड़े मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने पहला सेट 7-6 से जीता लेकिन दूसरा सेट वो 6-7 से हार गई और तीसरा सेट 8-10 से। लेकिन सुमित नागल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं पुरुष सिंगल्स में। राउंड ऑफ 16 में उज्बेकिस्तान के सरगेई फोमिन को सीधे सेटों में उन्होंने 6-3, 6-2 से हराया और फोमिन के खिलाफ उन्होंने अपना हेड टू हेड रिकॉर्ड भी 3-0 कर लिया है और अब मेडल पक्का करने से बस एक जीत दूर है सुमित नागल। इससे पहले पुरुष सिंगल के तीसरे राउंड में दक्षिणेश्वर सुरेश चाइनीज ताइपे के चुन सिंह सेंग से 3-6, 4-6 से हार गए। यूके भामरी और डी सुरेश की जोड़ी अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले अब खेलेगी और मिक्स डबल्स में यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले दूसरे दौर का मुकाबला खेलेंगे। इसके बाद आज जिस मुकाबले पे हम सब की निगाह है वो है विमेंस हॉकी का मुकाबला जिसका पहला सेमीफाइनल चल रहा है इस वक्त चीन और जापान के बीच और दोनों ही टीमें अभी तक कोई गोल नहीं कर पाई हैं। दूसरा सेमीफाइनल जिस पर हमारी नज़र है वो होगा भारत का रिपब्लिक ऑफ कोरिया से। तो हॉकी के इस मुकाबले पर हम सब की नज़र अब रहने वाली है। तो इन सब खबरों के साथ ही जो हमने फिर से बताना चाहेंगे आपको कि भारत अब मेडल टैली में सातवें स्थान पर पहुंच गया है। आज 4 गोल्ड हासिल किए भारत ने, 3 हासिल किए उसमें से उन्होंने कंपाउंड आर्चरी से हमने, और उसके अलावा 1 हमने हासिल किया ट्रैप शूटिंग के मिक्स टीम इवेंट में। तो इसके साथ ही 10 गोल्ड हो गए हैं अब भारत के हिस्से में, 21 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज के साथ कुल 59 मेडल हैं और भारत है 7वें पायदान पे। कल सुबह की शुरुआत हमने की थी भारत के 12वें स्थान के साथ, शाम होते होते भारत पहुंचा था 10वें पे, आज सुबह 8वें और अब है 7वें स्थान पर भारत। तो हमारा ये सिलसिला अपडेट्स का आपके साथ जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। अगला अपडेट लेकर हम फिर से हाजिर होंगे ठीक 3:30 पर। नमस्कार।
0: एशियन गेम्स

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: अरे बाबा, हम भी तो कहते हैं कि हमें काम पर रख लीजिए। वैसे काम पर आप हमें रखें या ना रखें, हम हमेशा 24/7 आपकी सर्विस में हाजिर रहते हैं। FM रेनबो है हमारा नाम। नमस्कार, चैनिका लेकर आई है तीन का तड़का। और वो कहते हैं ना, मतलब ये यारम वाला जो गाना था, वहाँ पर जो कहा गया कि हम बहुत काम की चीज़ हैं, तो याद आप रखिए और हमें अपने साथ जुड़े रहिए। जहाँ भी जाते हैं आप, बस पीछे पीछे चलेंगे हम, घर दफ्तर कहीं भी, हमेशा हमेशा साथ। फिलहाल तो फिल्मों की जो बातें हैं वो हैं आपके साथ आधे घंटे के लिए, आधे घंटे से थोड़ा कम समय अभी फिलहाल बचा है। 3:09 और 8 सेकंड स्टूडियो की घड़ी एकदम सही समय बता रही है। तो चलिए ना, रुख करते हैं सिनेमा की बातों की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी दृश्यम 3 के बारे में। 2 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है फिल्म, और हम जानते हैं कि ये जो डेट है ये दृश्यम के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट डेट है, सत्संग वाली डेट है ये, याद है ना आपको, अगर दृश्यम आपने देखी होगी तो। देखिए क्या कोइंसिडेंस है, 2 अक्टूबर को फिल्म आ रही है, सत्संग भी हुआ, सत्संग के इर्द गिर्द पूरी जो कहानी बुनी थी, जो इस फिल्म के जो एकदम प्राइमरी जो किरदार हैं, जो अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं, अजय देवगन ने जो विजय सालगांवकर का रोल निभाया, वो विजय सालगांवकर किस तरह की एक क्रिस्प कहानी बुनते हैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए, तो वो भी तो 2 अक्टूबर के ही इर्द गिर्द घूम रही थी ना। वैसे अड़चन थी एक, ये शायद रिलीज ना हो पाती क्योंकि कॉपीराइट का कुछ इशू हुआ है और उस पर किसी ने केस कर दिया, और ये जो विवाद है कॉपीराइट का, इस पर मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई जो हुई उसको टाल दिया फिलहाल, तो इसलिए फिल्म अब रिलीज़ होने वाली है। और पता है क्या, इतनी अधिक लोगों के मन में जिज्ञासा है ये जानने के लिए कि अब फाइनली अब फिल्म रैप हो जाएगी ना, अब ख़त्म होगी, रैप अप होगी, तो कहानी में अंत में होगा क्या, क्योंकि नाम भी जो है फिल्म का वो है दृश्यम 3 द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या होने वाला है कहानी का, सब जानना चाहते हैं, इसलिए टिकट जो है वो धड़ल्ले से बिक रहे हैं। और ऐसा सुनने में आया है कि 5 लाख के करीब टिकट जो है वो एडवांस में बिक गए हैं। अब बताइए आप देखना चाहते हैं क्या इसी वीकेंड, तो जल्दी जल्दी आप टिकट खरीदिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी से जहाँ जहाँ लगी है फिल्म हाउसफुल हो जाए। और वैसे मतलब मैं भी चाहती हूँ ये जानना कि द कंक्लूजन एक्चुअली है क्या, तो लगे हाथों अगर मौका मिलता है तो मैं भी देख ही आऊँगी। फिलहाल तो ये एक मज़े की खबर कि फाइनली अब विजय सालगांवकर की कहानी किस तरफ टर्न लेती है ये जानने का समय आ गया है।

सुन रहे हैं आप तीन का तड़का और दृश्यम 3 में एक चीज हम जरूर मिस करने वाले हैं, वो है कौन बताइए, अरे रहमान डकैत। वो अपना विग वाला जो लुक है ना, उससे खुद इतने इम्प्रेस हो गए कि दोबारा से बिना विग के वो स्क्रीन पर नहीं आना चाहते। और यही वजह थी कि बस शूटिंग शुरू होने के 7 दिन पहले अक्षय खन्ना ने दृश्यम छोड़ दी। बताइए भला कितना इम्पॉर्टेंट उनका कैरेक्टर था, कितनी बेहतरीन एकदम उनकी अदाकारी फिल्म में, हमेशा जैसे होती है हर फिल्म में। तो भाई ये तो एक बहुत ही मेजर लेटडाउन है, हम तो चाहते थे उनको देखना इस वाली फिल्म में भी, लेकिन क्या करें, हुआ नहीं है पॉसिबल। वैसे उधर दूसरी ओर कोई ऐसा है जो फिर से दिखने वाला है टीवी पर अपने बहुत बहुत बहुत फेमस चैट शो के साथ। पहली दफ़ा 2004 में ये जो शो है ये रिलीज़ हुआ और अब फाइनल सीज़न आएगा इसका, सीज़न नंबर 9। बात कर रही हूँ मैं करण जौहर की, और वो बड़ी इमोशनल से हो गए। उन्होंने लिखा कि कुछ ऐसी जर्नीज होती हैं जो आप नहीं चाहते कि वो ख़त्म हो, लेकिन आप जानते हैं कि एक समय ऐसा है या एक समय ऐसा आता है जब आपको लेट गो करना होता है, छोड़ना होता है। तो इनका ये जो शो है ये भी, वो कहते हैं करण की उनकी ज़िंदगी का एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पार्ट था और उन्होंने बहुत सारी फ्रेंडशिप्स, बहुत सारी यादें, बहुत सारे ऐसे पल, उनकी शब्दों में कंप्लीट मैडनेस वाले पल उन्होंने बनाए बिताए और बहुत सारा प्यार भी पाया, और उसके साथ ही कंट्रोवर्सी का भी बहुत ही बड़ा पोर्शन था इस चैट शो के साथ। तो फिलहाल इसका फाइनल सीज़न कह सकते हैं, फिनाले है सीज़न नंबर 9, ये अब बनेगा और टीवी पे दिखेगा। तो आप भी अगर शौकीन रहे हैं इस ये बातचीत की, इस बहुत ही खूबसूरत से शो के कार्यक्रम के, तो आप जुड़िएगा ज़रूर। और अगर नहीं आपको ये भाता रहा है फिर भी आप देख सकते हैं, लास्ट सीज़न है करण जौहर की इस कॉन्वर्सेशनल खूबसूरत से स्टाइलिश से शो का, नाम तो मैं बताऊंगी नहीं, आप जानते हैं नाम क्या है इसका। तो जुड़िए मेरे साथ, और भी ऐसी खबरें हैं। फिलहाल जिक्र जब हुआ है निर्देशक निर्माता साहब का, तो उनकी एक फिल्म का गाना तो बनता है।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: प्यारे श्रोताओं, परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे DPIIT इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। DPIIT यानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग इंटर्नशिप प्रोग्राम कॉलेज और शोध के छात्रों को भारत सरकार के कामकाज और नीतियों का व्यावहारिक अनुभव देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित एक अल्पकालिक सरकारी इंटर्नशिप योजना है। DPIIT इंटर्नशिप प्रोग्राम उम्मीदवारों को एक्सपोजर प्रदान करता है और भारत सरकार की कार्य संस्कृति को समझने का अवसर भी देता है, जो उम्मीदवारों को आगे के लिए तैयार करती है। इस इंटर्नशिप की सबसे खास बात यह है कि ये पूरे साल खुली रहती है और इसके लिए आप कभी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कानून, अर्थशास्त्र, वित्त, कंप्यूटर और पुस्तकालय प्रबंधन विषय से होना अनिवार्य है। इंटर्नशिप के लिए अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च कर रहे उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर रहे या शोधार्थियों के लिए इंटर्नशिप योजना लागू की गई है और इसका उद्देश्य यही है कि भारत सरकार की कार्य संस्कृति और विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से छात्र परिचित हो जाएं, अपनी आवश्यकता के अनुसार 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने की अवधि चुन सकते हैं छात्र, लेकिन आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इंटर्न को प्रतिमाह 10,000 का वजीफा दिया जाएगा। इंटर्नशिप अवधि पूरी होने के बाद वजीफे की राशि के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इंटर्न्स की संख्या क्या हो सकती है? एक समय में चयनित इंटर्न्स की अधिकतम संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। अवधि न्यूनतम 1 माह और अधिकतम 3 माह की होगी। इंटर्नशिप पूरी करने के बाद छात्रों को अनुभव का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जो लोग निर्धारित अवधि की इंटर्नशिप संतोषजनक ढंग से पूरी नहीं करेंगे, उन्हें कोई प्रमाण पत्र या वजीफा नहीं दिया जाएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में स्नातक, स्नातकोत्तर अनुसंधान करने वाले आवेदक आवेदन करने के पात्र हैं: इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कानून, अर्थशास्त्र, वित्त, कंप्यूटर, पुस्तकालय प्रबंधन। अन्य क्षेत्रों के उम्मीदवारों पर भी आवश्यकताओं के आधार पर विचार किया जा सकता है। प्रशिक्षुओं को अपने कार्य के अंत में अपने सीखने के अनुभव के बारे में संबंधित संभागीय प्रमुख को एक संक्षिप्त रिपोर्ट या पेपर जमा करना होगा। इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने के लिए आप dpiit.gov.in पर आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। तो प्यारे श्रोताओं, आज हमने बात की DPIIT इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में।
0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: और ये जो है समय कितनी जल्दी दम से जोर से जो है उड़ के निकल जाता है। हमारा भी अब समय हो चला है कि हम आपसे कहें टाटा बाय बाय, लेकिन जाने से पहले आपको बताऊं कि जो हमारे बहुत ही फेमस पार्श्व गायक हैं जुबिन नौटियाल, उनके घर में एक छोटा सा नन्ना सा मेहमान आया है गणेश चतुर्थी के दिन, और ये खबर उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की है। हमारी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और अभी फिलहाल इसी खबर के साथ मैं कार्यक्रम जो है तीन का तड़का समेटना चाहूंगी। आप सबके लिए छोड़े जा रही हूँ उन्हीं की आवाज में बजरंगी भाईजान का एक खूबसूरत सा गीत, और हम सुनेंगे 3:30 पर विज्ञापन दाता द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुनते रहें, साथ रहें, आप जुड़े हुए हैं 107 FM रेनबो कोलकाता पर।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: समय कभी रुकता नहीं, जो बीत गया उससे सीखिए और आने वाले समय का स्वागत नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई शुरुआत के साथ कीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग छत्तीसगढ़ से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अलकबीर। वो लिखते हैं,
1: आपने लिखा है सप्रेम नमस्कार विमलेश दीदी जी और अजीत सर जी। 31 अगस्त को जापान में मशीनों को रिटायर करने के बारे में जो आपने बताया वो हमें बहुत ही भावुक कर गया। सोचिए जो देश निर्जीव मशीनों के लिए इतना आदर रख सकता है तो उनमें मानव के लिए कितनी श्रद्धा होगी। हमें भी सबके लिए कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए।
2: चरखी दादरी हरियाणा से
1: आप लिखते हैं, श्रीमान आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रोताओं के लिए मोबाइल नंबर देने का कष्ट करें, धन्यवाद।
2: जी, इस दिशा में हमारा प्रयास जारी है, नंबर प्राप्त होने पर आप सबको सूचना दे दी जाएगी।
1: अगला संदेश हमें मिला है गेंदा टोला बाजार चौक जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता जी का।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
1: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
2: धन्यवाद आप सबको प्यारे प्यारे संदेशों के लिए।
1: एक बार फिर से सभी श्रोताओं का बहादुर बच्चों पर आधारित रेडियो श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है।
2: साथियों, आज हम एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी उम्र तो बहुत छोटी थी लेकिन उसकी समझदारी ने उसे असाधारण बना दिया। आज पूरी दुनिया में उसे उदाहरण के रूप में याद किया जाता है।
1: बिल्कुल, और इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि उस बच्ची ने जो कुछ किया वह किसी महान नेत्री की तरह नहीं बल्कि ध्यान से सीखने और सही समय पर सही बात कहने के कारण किया।
2: श्रोताओ, उस बच्ची का नाम था टिली स्मिथ। बात तब की है जब वो वर्ष 2004 में अपने परिवार के साथ थाईलैंड के समुद्र तट पर छुट्टियां मना रही थी।
1: छुट्टियां यानी समुद्र, रेत, लहरें और उनके बीच में ढेर सारी मस्ती।
2: जी,
1: नए साल का अवसर था इसलिए बहुत सारे पर्यटक भी समुद्र के तट पर छुट्टियां मना रहे थे।
2: सभी मगन थे लेकिन तभी टिली स्मिथ ने गौर किया कि अचानक समुद्र का व्यवहार कुछ अजीब सा होने लगा। पानी में कुछ असामान्य परिवर्तन दिखाई देने लगे
1: और टिली ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा है।
2: जी,
1: समुद्र की सतह असामान्य लग रही है। लहरें कभी कभी बहुत तीव्र हो जाती तो कभी बहुत धीमी।
2: जी,
1: उसे लगा शायद ये वही संकेत हो सकता है जिसके बारे में उसने कक्षा में पढ़ा था। उसके मस्तिष्क में एक शब्द गूंज उठा,
2: सुनामी, यानी समुद्र में उठने वाली बहुत बड़ी और विनाशकारी लहरें।
1: बिल्कुल साथियों, उसने अपनी कक्षा में ये भी पढ़ा था कि सुनामी सामान्य समुद्री लहरों जैसी नहीं होती।
2: जी,
1: समुद्र के भीतर भूकंप या दूसरी बड़ी भूगर्भीय हलचल से बहुत बड़ी मात्रा में पानी विस्थापित हो सकता है।
2: जी,
1: इससे समुद्र की लहरें तट की ओर बहुत तेजी से और अत्यंत शक्तिशाली रूप में बढ़ सकती हैं।
2: फिर उसने

0: माता पिता को बताया कि कुछ गड़बड़ है और इसी समय तुरंत लोगों को समुद्र तट से दूर चले जाना चाहिए। फिर क्या था, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताना शुरू किया।
1: तो विमलेश जी, जब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया तो क्या लोगों ने उनकी बात मान ली?
0: देखिए, शुरुआत में सबको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन टिली लगातार सबको समझाती रही। उसने स्कूल में समुद्र के ऐसे व्यवहार के बारे में पढ़ा है और ये निश्चित रूप से सुनामी का संकेत हो सकता है।
1: यानी हम कह सकते हैं कि उसने अपनी पढ़ाई को सिर्फ परीक्षा के लिए ही याद नहीं किया
0: जी,
1: बल्कि वास्तविक जीवन में उसका इस्तेमाल किया
0: जी।
1: तो विमलेश जी, फिर आगे क्या हुआ?
0: लोगों ने जब समुद्र के विचित्र व्यवहार को देखा तो वो भी समझ गए कि ये सामान्य संकेत नहीं है। फिर तुरंत वहाँ मौजूद लोगों को समुद्र तट से हटाया गया और सुरक्षित स्थान की ओर ले जाया गया।
1: और कुछ ही समय बाद सुनामी की भयंकर लहरें वहाँ आ पहुँची। सब कुछ बहुत डरावना और विनाशकारी था।
0: साथियों, वर्ष 2004 की हिंद महासागर की ये सुनामी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी जिसने कई देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया और बहुत बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ।
1: लेकिन टिली की सतर्कता के कारण उस समुद्र तट पर मौजूद बहुत से लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान तक पहुँचने का मौका मिला।
0: जी हाँ साथियों, टिली की कहानी दुनिया भर में इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि उसने दिखाया अगर बच्चा ध्यान से पढ़ता है तो उसकी शिक्षा कभी भी काम आ सकती है।
1: बिल्कुल, श्रोताओं, अक्सर हम बच्चों से कहते हैं पढ़ाई करो, परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य केवल अच्छे अंक पाना ही नहीं है, क्यों विमलेश जी?
0: बिल्कुल अजीत जी, सही कहा। सोच समझ कर की गई पढ़ाई हमें जीवन की परिस्थितियों को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है।
1: और बालिका टिली इसका बहुत सुंदर उदाहरण है
0: जी।
1: उसने जो पढ़ा था उसे याद रखा, परिस्थिति को ध्यान से देखा और डरने के बजाय लोगों को चेतावनी दी।
0: अजीत जी, मुझे लगता है इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात है।
1: वो क्या?
0: वो ये है आवाज उठाने का साहस। कभी कभी हमें सही बात पता होती है लेकिन हम ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि लोग मेरी बात क्यों मानेंगे, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा।
1: लेकिन टिली ने ऐसा नहीं किया, उसने बलपूर्वक अपनी बात कही
0: जी।
1: क्योंकि उसे लगा कि अगर वो चुप रही और खतरा सच निकला तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
0: यानी सही ज्ञान के साथ साहस भी जरूरी है।
1: बिल्कुल विमलेश जी, एक और बात, संकट के समय घबराने के बजाय संकेतों को समझना चाहिए।
0: मुझे लगता है अजीत जी कि सिर्फ आज के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए ये कहानी बहुत उपयोगी है। बहुत जरूरी है कि हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ें, भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और आग जैसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए ये जरूर जानें।
1: जी हाँ श्रोताओ, टिली स्मिथ की कहानी हमें बहुत सुंदर संदेश देती है और वो ये कि
0: ध्यान से सीखा हुआ ज्ञान सही समय पर जीवन बचा सकता है।
1: और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि कभी अपने ज्ञान को छोटा मत समझिए,
0: क्योंकि सही समय पर एक छोटी सी जानकारी भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है।
1: तो उमंग कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं, हम आप सबको यही कहना चाहते हैं कि पढ़िए, समझिए, सवाल पूछिए और जो सीखें उसे अपने जीवन में लागू भी करने की कोशिश कीजिए,
0: क्योंकि किताब का ज्ञान तभी सार्थक है जब वो हमें बेहतर और अधिक जागरूक इंसान बनाए।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुनी बहादुर बालिका टिली स्मिथ की कहानी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बया हमारी चिड़िया रानी।
0: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता को इस कार्यक्रम में मधुर गीत संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि बया पक्षी कितने कौशल से अपना आकर्षक घोंसला बनाती है।

0: बच्चों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। पता है, वैसे तो सभी पक्षियों के घोंसले सुंदर होते हैं, लेकिन सबसे सुंदर घोंसला बया पक्षी का ही माना जाता है। एक बात बहुत रोचक है, और वो ये कि बया रानी के घोंसले में उसके परिवार और बच्चों के आराम से रहने के लिए अलग अलग जगह भी होती है। ये तो बात हुई बया पक्षी के घोंसले की। अब आप बताइए कि आपने और किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। अपने शिक्षकों और बड़ों की सहायता से अलग अलग पक्षियों के घोंसले देखिए और उनके चित्र बनाइए। आपने गीत में सुना था कि बया रानी नदी से पानी लाती है, लेकिन जरा सोचिए और मालूम कीजिए कि यदि कहीं नदी या तालाब भी न हो तो बया रानी या दूसरे पक्षियों को पानी कहाँ से मिलता होगा। अब आपके करने के लिए एक काम, जैसे हमें पानी चाहिए वैसे ही पक्षियों को भी तो पानी चाहिए, है ना? पक्षियों को पानी मिले इसके लिए आप अपने घर की मुंडेर पर या किसी खुली जगह पर एक बर्तन में उनके लिए पानी रख सकते हैं। तो करके देखिए ना, आप भी खुश होंगे और पक्षी भी बहुत खुश होंगे। अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम बया हमारी चिड़िया रानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय वायुसेना के जांबाज सैनिक निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरता के बारे में जानकारी दी गई है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने भारत पाक युद्ध के दौरान किया था। वे भारतीय वायुसेना के एकमात्र योद्धा हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। इन वीरों ने समरांगन में हमेशा देश का मस्तक ऊंचा किया और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए आज याद करते हैं भारतीय वायुसेना के जाबाज योद्धा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को, जिन्हें उनके अतुल्य रणकौशल और अप्रतिम शौर्य के कारण देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को इसवाल गांव में हुआ था। पिता सरदार त्रिलोक सिंह सेखों और माता हरबंस कौर घर में इस बालक के आगमन से बेहद प्रसन्न थे। इसवाल गांव पंजाब के लुधियाना शहर के समीप हलवारा एयरफोर्स स्टेशन के पास था।
0: सीमावर्ती सैन्य हवाई अड्डा होने के कारण हलवारा एयरफोर्स स्टेशन

0: युद्धक विमानों का आना जाना लगा रहता था। इसलिए कहना ना होगा कि बालक निर्मल ने पैदा होने के बाद माता पिता और परिजनों की स्नेह भरी पुचकार और पंजाबी लोक गीतों के अलावा युद्धक विमानों की गर्जना भी सुनी थी।
1: संभवतः इसीलिए बचपन से ही उनके मन में वायुयानों का आकर्षण कूट कूट कर भरा था। जब भी किसी विमान की आवाज आती, वो झट से घर के बाहर निकलकर विमान को देखने की कोशिश करते।
2: माँ, मुझे हवाई जहाज देखना बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा?
2: मैं तो जा रहा हूँ हवाई जहाज देखने।
0: अरे अरे पुत्र सुन तो, तू भी ना। अरे
2: मैं तो गया हवाई जहाज देखने।
0: अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना।
1: जैसे जैसे वो बड़े होते गए, विमानों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता ही गया। जब वो चमचमाती हुई सैनिक वर्दी में वायु सैनिकों को देखते, तो उनके मन में सेना में जाने की प्रबल इच्छा हिलोरे लेने लगती। जब निर्मल के गांव में जवान छुट्टियों में घर आते, तो बालक निर्मल उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करता।
2: सच्चियाकाल चाचा।
3: सच्चियाकाल।
2: छुट्टी पर आए हो?
3: अरे निर्मल, तुम तो बहुत बड़े हो गए। हाँ, मैं कल ही आया हूँ। और कैसे हो पुत्र?
2: मैं ठीक हूँ चाचा, मुझे आप लोगों की वर्दी बहुत अच्छी लगती है।
3: हाँ पुत्र, हमारी वर्दी तो है ही शानदार। अरे भाई, देश की सेवा करने वालों की वर्दी तो शानदार ही होगी ना।
2: मैं भी सेना में जाऊंगा। चाचा बताइए ना, आप लोग सेना में क्या क्या करते हैं?
3: अरे पुत्र, हम कसरत करते हैं, परेड करते हैं, युद्ध का अभ्यास करते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं।
2: बंदूक भी चलाते हो?
3: हाँ भाई, सैनिक हैं तो बंदूक तो चलाएंगे ही ना।
2: और हवाई जहाज भी उड़ाते हो?
3: हाँ।
2: मैं भी सेना में जाकर हवाई जहाज उड़ाऊंगा।
3: जरूर पुत्र जरूर, लेकिन इसके लिए ना पहले अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करो।
2: जी चाचा।
0: निर्मल को हरी सिंह नलवा की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। हरी सिंह नलवा 19वीं शताब्दी के एक सुप्रसिद्ध योद्धा थे। उनके शौर्य की गाथाएं पंजाब के गांव-गांव में बताई और गाई जाती हैं।
1: निर्मल जीत अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद लुधियाना के समीप अजीतसर मोहे नामक कस्बे में स्थित खालसा हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सन 1962 में उन्होंने दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में दाखिला लिया। यहां वो नेशनल कैडेट को यानी एनसीसी में शामिल हुए और एरो मॉडलिंग में अपनी विशेष रुचि दर्शाई।
0: इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया। भारतीय सेना की शानदार विजय हुई। सेना की बहादुरी के बहुत से किस्से जन जन में फैल गए।
1: भारतीय वायु सेना में शामिल होने के अपने चिर संचित स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने बीच में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने भारतीय वायु सेना में आवेदन किया और आखिरकार 4 जून 1967 को उन्हें भारतीय वायु सेना में नियुक्ति मिल गई।
0: शीघ्र ही उनकी पदोन्नति हो गई और वो फ्लाइंग ऑफिसर के पद तक पहुंच गए और भारतीय वायु सेना की फ्लाइंग बुलेट्स कही जाने वाली 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल हो गए। अपने विनम्र स्वभाव के कारण वो सबके चहेते बन गए। सभी उन्हें भाई कहकर बुलाते थे। अपने मातहतों के प्रति भी उनका रवैया अत्यंत मैत्रीपूर्ण था।
1: फ्लाइंग ऑफिसर जैसे उच्च पद पर होते हुए भी वो हर काम के लिए तैयार रहते। उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। एक दिन की बात है, वो एयरफोर्स कमांड ऑफिस से लौटते हुए सैनिक हवाई अड्डे के हैंगर में पहुंच गए। हवाई अड्डे में हैंगर उस जगह को कहते हैं जहां विमानों को मरम्मत, तकनीकी देखभाल और सफाई के लिए रखा जाता है।
4: गुड मॉर्निंग मान सिंह, कैसे हो?

0: निर्मल सर आप यहाँ?
1: हाँ मैं यहाँ, एयरफोर्स कमांड ऑफिस गया था, लौटते हुए सोचा कि एयरक्राफ्ट हैंगर से होता हुआ चलूं।
2: अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी तरह से इस एयरक्राफ्ट को साफ किया, देखो ना यार कैसा चमक रहा है, बहुत खूब।
0: सर ये तो हमारा काम है।
1: मानसिंह मुझे लगता है कि इस विमान की टेल को कुछ और चमकाने की जरूरत है, जरा वो क्लीनिंग टूल तो देना मुझे।
0: सर आप भला सफाई करेंगे? ये तो हमारा काम है सर।
1: नहीं मानसिंह, अगर हम जहाज उड़ा सकते हैं तो इसकी सफाई भला क्यों नहीं कर सकते। अरे दो ना मुझे, लाओ। एक मिनट ये पॉलिश दे। हाँ पॉलिश दे। और देखो क्या चमक रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा मेरा इसमें।
3: तो ऐसे थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। उनके बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प है। उन दिनों भारतीय वायुसेना के पास युद्धक विमानों में मुख्य रूप से छोटे आकार के नेट विमान हुआ करते थे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का कद बहुत लंबा था, इसलिए छोटे लड़ाकू विमान नेट 657 में बैठ पाना उनके लिए बहुत असहज था।
1: एक मिनट मानसिंह, तो मैनू फिट होन दे यार। एक मिनट मैं अपने ये घुटने जरा से मोड़ लेता हूँ। हो गया फिट, स्मार्ट लग रहा हूँ ना।
4: फिर भी निरंतर अभ्यास के कारण वो इन छोटे विमानों को भी उड़ाने में सिद्धहस्त हो गए थे। वो कमाल के पायलट थे। जब वो अपना विमान उड़ाते तो उनकी कलाबाजियां देखते ही बनती। और फिर आया 1971 का साल। पाकिस्तान में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में हवाई हमलों के द्वारा युद्ध छेड़ दिया।
3: पाकिस्तानी हवाई हमले में भारत के कई सामरिक महत्व के क्षेत्र तबाह हो गए थे। 14 दिसंबर 1971 का दिन, समय प्रातःकाल, लगभग 10 बजे। अचानक श्रीनगर एयरबेस का सायरन बजने लगा। ये संकेत था पाकिस्तानी हवाई हमले का। श्रीनगर एयरफील्ड पर दुश्मन के F-86 श्रेणी के 6 सेबर जेट विमानों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तानी विमानों ने एयरफील्ड में धुआंधार बम बरसाने शुरू कर दिए।
4: सामरिक समुदाय में यह माना जाता था कि युद्ध क्षमता की दृष्टि से पाकिस्तानी सेबर जेट विमान अपनी तकनीकी विशेषताओं के कारण भारत के नेट विमानों की अपेक्षा अधिक सक्षम है। श्रीनगर एयरफील्ड में नेट विमानों की एक टुकड़ी किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी।
3: आदेश पाते ही फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने अपने नेट विमान से टेक ऑफ किया। सेखो हवा में पहुंचे ही थे कि उन्हें 6 पाकिस्तानी लड़ाकू सेबर जेट विमान घेर चुके थे, जो लगातार उन पर बम बरसा रहे थे।
4: और अब शुरू हुआ लड़ाकू विमानों के बीच आमने सामने का भीषण युद्ध। एक ओर 6 शक्तिशाली सेबर जेट विमान थे और दूसरी ओर फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का इकलौता नेट विमान। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों अपने अपूर्व रण कौशल से पाकिस्तानी विमानों से भिड़ गए। उनकी फुर्ती देखते ही बनती थी। उन्होंने ऐसी कुशलता से विमान उड़ाया कि उनकी चपलता और रफ्तार देखकर दुश्मन भी चकित रह गया।
3: इसी बीच उनका विमान शत्रु के निशाने पर आ गया। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के विमान को 6 पाकिस्तानी विमानों से घिरा हुआ देखकर भारतीय एयरफोर्स ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष से उन्हें रेडियो संदेश भेजा गया।
0: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, आपके विमान को गोली लगी है, आप तुरंत रनवे पर वापस आएं।
1: सर अभी तो दुश्मन के दो दो जहाज मेरे सामने हैं, तब तक मारूंगा नहीं।

0: तक लौटूंगा नहीं। दुश्मन का ये वाला जहाज बिल्कुल सामने, निशाना लगाता हूँ। अब बिल्कुल निशाने पर आ गया। ये तो ऊपर से निकल गया। मैं इसके ऊपर जाता हूँ, वहां से निशाना लगाना आसान होगा।
1: Flying officer.

0: ऐसा कहकर फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने एक पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाकर उड़ा दिया और एक बार फिर अपनी रफ्तार और कलाबाजियों से पाकिस्तानी विमानों को उलझा दिया। इसी बीच मौका देखकर उन्होंने एक और पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाया और उसे मलबे में बदल दिया। आग की लपटों से घिरा वो विमान नीचे आ गिरा।
1: अब दुश्मन के चार विमान बचे थे। दो विमानों को गिराने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने बचे हुए चार विमानों को खदेड़ना शुरू किया। घबराकर दुश्मन के जहाज वापस लौटने लगे।
2: ओए कायरो, ओए भागते कहाँ हो? तो सामने आओ, आओ मुकाबला करो।
0: इसी बीच उनका विमान एक बार फिर से दुश्मनों के निशाने पर आ गया और उसका एक इंजन खराब हो गया। दुश्मनों की गोलियों से उनका जहाज अब जर्जर हो चुका था और गिरने लगा था।
1: कुछ क्षणों बाद फ्लाइंग ऑफिसर शेखों का अंतिम रेडियो संदेश फिर सुनाई दिया।
2: कंट्रोल रूम, दिस इज शेखों, शेखों 102, शेखों 102। मेरा जेट भी अब दुश्मन के निशाने पर आ चुका है सर। अब आप लोग अगला मोर्चा संभालिए। अलविदा सर, शायद अब मुलाकात ना हो। जय हिंद।
0: और अपना आखिरी संदेश देने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर शेखों देश के लिए शहीद हो गए।
1: उनकी इस असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र के कुछ अंश इस प्रकार से हैं।
0: हालांकि ये बराबरी की टक्कर नहीं थी, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने अकेले ही दुश्मनों को पूरी टक्कर दी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए।

0: फ्लाइंग ऑफिसर सेख हों, परमवीर चक्र का सम्मान पाने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र सैनिक हैं। शहादत के समय उनकी आयु मात्र 26 वर्ष थी। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में 1971 के युद्ध की धारा भारत के पक्ष में मोड़ देने वाले इस वीर सैनिक को कृतज्ञ राष्ट्र पूरी श्रद्धा से नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
1: चेतना,
2: अर्शद,
1: सौम्या,
2: प्रसून
1: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
2: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार। उमंग।

आकाशवाणी कोलकाता का ये एफएम रेनबो चैनल है। अभी आप सुन रहे थे विज्ञापन दाता द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कृपया अगले कार्यक्रम की घोषणा हेतु प्रतीक्षा कीजिए। आप सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो कोलकाता।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: बीसवें एशियाई खेलों पर इस ताजा अपडेट के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनुपम पाठक अपनी साथी मुदिता के साथ। आज का दिन बहुत ही शानदार रहा है, बार बार आपको बताने का मन होता है, क्या पता इसके पहले आपने ना सुना हो, सुना हो तो दोबारा खुश हो जाइए। भारत ने आज बहुत सुनहरी सफलताएं प्राप्त की, 4 स्वर्ण पदक आ चुके हैं और एक और खेल जिसमें हमें स्वर्ण पदक की हमेशा उम्मीद होती है क्योंकि हमारी रग रग में बसता है, हॉकी। आज महिलाएं खेल रही हैं, भारतीय लड़कियां इस समय मैदान में हैं, सेमीफाइनल चल रहा है, तीसरा इस समय क्वार्टर चल रहा है। अभी तक मुकाबला दक्षिण कोरिया के विरुद्ध 0-0 है। इसके पहले भारत की लड़कियों ने बहुत ताकत के साथ, बहुत दमखम के साथ, बहुत एक तरफा मैच खेले थे और जीते थे, लेकिन आज इस सेमीफाइनल में सचमुच हमें बहुत जुझारू हॉकी देखने को मिल रही है। स्थिति अभी तक यह है कि भारत का पोजीशन लगभग 60% है, 9 पेनल्टी कॉर्नर मिस चुके हैं लेकिन अभी एक को भी भुना नहीं पाए हैं और दक्षिण कोरिया पूरी ताकत से प्रतिरोध कर रहा है और उसके जवाबी प्रत्याक्रमण का सामना भी करना पड़ता है भारत को। फिलहाल अभी वक्त है, देखते हैं क्या होता है।
2: जी, और रेसलिंग की एक बार हम फिर से बात करेंगे। मेंस ग्रेको रोमन कुश्ती में सुनील कुमार ने पुरुषों के 87 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल कर लिया है। सुनील ने ब्रॉन्ज मेडल बाउट में फिलीपींस के कैलम जॉनसन को 9-0 से हराया। और हम अपने सुनने वालों को बता दें कि भारतीय पहलवान के लिए ये लगातार दूसरा एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल है। इसके पहले हांगजो में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता था और इसके साथ ही वो एशियाई खेलों में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रेको रोमन रेसलर बन गए हैं।
1: बिल्कुल, और पिछली बार की तरह इस बार, पिछली बार हमें कोई स्वर्ण पदक नहीं मिला था और इस बार उम्मीद करते हैं स्वर्ण पदक भी आना चाहिए। जिस हिसाब से इस जब खेल अपने उत्तरार्ध की ओर आ गए हैं, बल्कि कहना चाहिए बहुत अधिक समय नहीं बचा है, बहुत दिन नहीं बचे हैं, तो भारतीय टीम बिल्कुल पूरे कहना चाहिए एकदम पुनर्जीवित सी दिख रही है। आज भारतीय दल ने 4 स्वर्ण पदक पाए हैं और अभी बहुत उम्मीदें हैं, अभी कंपाउंड आर्चरी में बहुत कुछ आना बाकी है, तो तैयार रहिए, अपडेट्स के साथ रहिए और जहां जहां से आप जान सकते हो 20वें एशियाई खेलों के बारे में जानते रहिए।
2: जी, टेनिस से अच्छी खबर नहीं है। मेंस डबल्स में यूकी भामरी और डी सुरेश की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में चाइनीज ताइपेई के चेन जुई हो और यू सीओ सू की जोड़ी से 6-7, 3-6 से हार गई है। इसके पहले अनिरुद्ध चंद्रशेखर और बालाजी की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में हार गई थी और इसके साथ ही मेंस डबल्स में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। अब मिक्स डबल्स में आज यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले दूसरे दौर का मुकाबला खेलेंगे। पुरुष सिंगल्स में सुमित नागल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।
1: जी, मिश्रित युगल में जो मैच होना है अभी शेड्यूल्ड है, अभी इसकी शुरुआत होनी बाकी है, लेकिन स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का रिजल्ट इस बीच आ गया है। पुरुषों के स्पीड 4 का क्वालिफिकेशन था जिसमें भारत के दीपू मल्लेश 28 वर्ष के हैं, वो क्वालिफाई कर गए हैं और उन्होंने जो 4 प्रयास किए थे उसमें 5.19, हर बार देखना होता है कब से कम समय आपको कब लगा है, तो अपने दूसरे प्रयास में उन्होंने लेन बी में 5.09 सेकंड का समय निकाला और इसके साथ ही वो कुल 19 लोगों में 11वें स्थान पर रहे और क्वालिफाई कर लिया। कल इसका क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा।
2: जी अनुपम, सफलताओं की बात हम कर रहे हैं लेकिन साथ ही कुछ असफलताएं भी रही हैं। जूडो में अस्मिता डे अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच हार गई हैं। वहीं कैनो स्लालम में मेंस कयाक सिंगल में प्रद्युम्न सिंह राठौर फाइनल में 6 स्थान पर रहे और विमेंस कैनो सिंगल में फाइनल में पल्लवी जगताप अंतिम स्थान पर रही हैं।
1: और एक बार फिर बता दें कि तीसरा क्वार्टर भारत और कोरिया के बीच में जो मैच चल रहा है वो लगभग समाप्त होने को है। 1:46 बचे हैं, यानी लगभग 3 हिस्सा गेम का हो चुका है, 1 हिस्सा बचा है, लेकिन अभी तक गोल रहित ये मुकाबला चल रहा है। भारतीय टीम कोशिश तो बहुत कर रही है लेकिन कोरिया पूरी ताकत के साथ उनका प्रतिरोध कर रही है और गोल अभी तक तो नहीं होने दिया है।
2: जी, और भारतीय लड़कियों के सफर को अगर आपने अभी तक नहीं फॉलो किया है तो हम आपको

0: बता दें कि इस पूरे टूर्नामेंट में वो अनबीटन रही हैं। और जरा देखिए अनुपम की उज्बेकिस्तान से 19-0 से, इंडोनेशिया से 17-1, थाईलैंड से 20-1, जापान से 3-1 और सिंगापुर से 7-0 से उन्होंने मैच
1: जी। और स्तर कैसे एकदम से बढ़ता है। इस बीच एक बार फिर पेनल्टी कॉर्नर मिल गया है, भारतीय टीम पेनल्टी कॉर्नर ले रही है और क्या गोल हो गया है, ये लगता है गोल हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ये गोल हो गया है। कितनी अच्छी बात है, अपडेट का समापन हम इस बात के साथ कर रहे हैं कि भारतीय लड़कियां कोरिया के विरुद्ध 1-0 से आगे हो गई हैं। हमें इंतजार है बस रेफरी के इशारे का जी, और ये एक अच्छी खबर भारत के लिए, एकदम उछल पड़ी है लड़कियां ये
0: जी। और ऐसी अच्छी खबर के साथ हम इस अपडेट का समापन कर रहे हैं। ठीक एक घंटे बाद यानी 5:30 पर हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: गाने बाजू ऑन ए रेडियो सुनछो 107 FM रेनबो, सात सुरे सारा दिन, सात सुरे सारा दिन। শুনছো ক্যাফে কলকাতা, ক্যাফে কলকাতা 107 FM রেইনবোতে, ক্যাফে কলকাতা।

0: नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल आवर लिसनर्स। एशियन गेम्स की ताजा अपडेट्स के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं हम। मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं अनुपम पाठक। और इस वक्त की अपडेट की शुरुआत फिर एक अच्छी खबर से। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंच गई है, जहां उसका सामना चीन से होगा।
1: बिल्कुल, और देखने लायक मैच होगा। और देखने लायक मैच तो ये भी था जो बस अभी खत्म होगा। अगर आप पिछले एक घंटे से अधिक समय से हमारे साथ हैं तो आपको याद होगा अपनी पिछली अपडेट जब हम खत्म कर रहे थे, खत्म करने के कुछ सेकंड्स पहले ही गोल हुआ था, इशिका ने किया था। इसके पहले दो क्वार्टर्स यानी पहले दोनों क्वार्टर्स में दोनों टीमें एक दूसरे को आंकती ही रही थी। भारत ने प्रयास तो बहुत किए थे, कुल मिला के 9 पेनल्टी कॉर्नर पाए थे लेकिन एक में भी गोल नहीं कर पाए थे। कोरिया लगातार प्रतिरक्षण में, खासतौर से उनके गोली ने बहुत अच्छे सेव किए थे। लेकिन जो दूसरा हाफ है उसमें बिल्कुल कहानी पलट गई। भारतीय टीम ने तो ऐसे गोलों की झड़ी लगा रखी थी, आज सचमुच एक कांटे का मैच, उन्हें कांटे की टक्कर मिली। और जो तीसरा क्वार्टर शुरू हुआ, हाफ टाइम के तीसरा क्वार्टर जब शुरू हुआ, उसके बाद का जो हिस्सा है हाफ टाइम पूरी तरह से भारत के नाम ही रहा। और 48वें मिनट में कप्तान सलीमा टेटे ने क्या शानदार फील्ड गोल किया। उन्होंने एक इंटरसेप्ट किया पास को और बहुत तेजी के साथ सर्किल में घुसी। सर्किल में घुसने के बाद तेज झन्नाटेदार शॉट लगाया, इतना तेज था कि एक रक्षक की स्टिक से टकराकर डिफ्लेक्ट होकर वो गोल पोस्ट पे चला गया। और उसके पहले आज दीपिका का नाम स्कोरर में तो नहीं है, लेकिन जो पहला गोल हुआ था उसमें दीपिका ने जो पेनल्टी कॉर्नर लिया था, एक बड़ा अच्छा वेरिएशन किया। उन्होंने पुशर की ओर वापस बॉल को धकेल दिया था और वहां इशिका ने उस बॉल को पकड़कर चकमा दे दिया गोली को और पहला गोल भारत के लिए किया था। यानी भारतीय लड़कियां पहुंच गई हैं फाइनल में, अब बारी है भारतीय लड़कों की। और हम सबके मन में तो उम्मीद है, हॉकी तो हम उड़ते भी चाहते हैं, दो स्वर्ण पदक हमारा मन तो चाहेगा ही चाहेगा।
0: बिल्कुल, और दो ही क्यों, हमारा मन तो और बहुत से पदकों के लिए है। और ये 16 साल में पहली बार हो रहा है अनुपम के एशियन गेम्स के फाइनल में भारत के एक से ज्यादा बॉक्सर्स हैं। लवली नाम महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग में पहुंच गई है गोल्ड मेडल बाउट में, और इसके पहले परवीन हुडा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में, और पुरुषों में अंकुश पंघाल ने 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बना ली थी। तो कम से कम 3 सिल्वर मेडल पक्के हैं।
1: बिल्कुल, और कांस्य पदक तो आए हैं, उनको तो गिनना भी है इसमें। तो कुल मिलाकर बॉक्सिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। पिछली बार लवलीना को सिल्वर मिला था, देखते हैं इस बार क्या अपने पदक का रंग बदलती है। आज की उनकी बाउट बहुत मुश्किल थी कहना चाहिए, बस किसी तरीके से उन्होंने इसको पार कर लिया है। अगली लड़ाई पूरी तरह से उनके नाम हो, हम सब की दुआ।
0: जी बिल्कुल। और स्क्वाश में पुरुषों और महिलाओं की टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। पुरुषों ने कुवैत को हराया है 2-0 से। वीर चोटरानी ने 3-1 से जीतकर अच्छी शुरुआत दिलाई, और अभय सिंह ने सीधे गेम में जीत हासिल कर मुकाबला अपने नाम किया। पुरुष टीम का अगला मुकाबला मलेशिया से होगा, और इसके पहले महिला टीम ने सिंगापुर को 2-0 से हराया, जिसमें तन्वी खन्ना और अनाहत सिंह ने अपने अपने मैच जीते। महिला टीम का सेमीफाइनल मुकाबला हांगकांग से होगा।
1: यानी इसमें भी दो पदक हमारे पक्के हो चुके हैं। और खास तौर से स्क्वैश में मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है, बल्कि सभी लोगों को लग रहा होगा, एक जो परंपरा होती है ट्रांजिशन की, आप याद कीजिए सौरभ घोषाल, दीपिका पलिक्कल और संधू, हरजिंदर सिंह संधू, इन लोगों ने कितना अच्छा खेला था। और अब जो नई पीढ़ी आ गई है, जिसमें हम अभय सिंह की बात करें, अनहत की बात करें और हम तन्वी की बात करें, ये सब कितने अच्छे तरीके से इस स्क्वैश की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल। और इसके साथ ही गोल्फ के मुकाबले आज से शुरू हो गए हैं, जिसमें वेमेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले के पहले राउंड में प्रणवी शरत दूसरे स्थान पर रही हैं। दीक्षा डागर, आदित्य अशोक और प्रणवी शरत की महिला टीम पहले राउंड में फिलीपींस के साथ संयुक्त छठे स्थान पर रही। वहीं सप्तक तलवार, वीर अहलावत और युवराज संधू की पुरुष टीम पहले दौर में फिलीपींस और हांगकांग के साथ 5वें स्थान पर रही है। भारतीय गोल्फर कल राउंड 2 के लिए वापसी करेंगे।
1: बिल्कुल, और यहाँ पर देखना होगा आदित्य अशोक का जो अनुभव, हमारी सबसे अनुभवी गोल्फर वही हैं, अब वो कितना काम आता है, कितना आगे तक ले जा सकती हैं। अभी बहुत सारे खेल हैं जिनमें पदकों की पूरी पूरी उम्मीद है। आज की बात करें तो आज जरूर भारत के हिसाब से अगर देखें तो दिन लगभग लगभग समापन की ओर है। जितने भारतीय खिलाड़ी थे उन सबकी स्पर्धाएं लगभग पूरी हो गई हैं और दिन बहुत अच्छा रहा है। 3 स्वर्ण पदक तो आर्चरी से आए, क्या बात है, आज का दिन भला कौन भूलना चाहेगा। और इसके अलावा शूटिंग में नीरू ने एक बार फिर स्वर्ण पदक पर निशाना साधा कायनन के साथ।
0: बिल्कुल, एक स्वर्ण दिन रहा है भारत के लिए। इसके अलावा ट्रैक साइकिलिंग में लेकिन विमेंस कैरिंग के फाइनल मुकाबले में भारत की कीर्ति रंगास्वामी चेक्का चौथे पर रही, और मेंस स्प्रिंट में रेपेशाज में भारत के डेविड बेकहम, एल्का थोचुंगो और रोनाल्डो सिंह लाइतोंजाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं।
1: तो आपको ये बताते हुए कि एक घंटे बाद 6:30 बजे हम फिर होंगे आपके साथ। मुदिता के साथ अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: गाने बाजू ओने रेडियो सुनछो 107 FM रेनबो सात सुरे सारा दिन।
4: सुनछो कैफे कोलकाता 107 FM रेनबो ते।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: बीसवें एशियाई खेलों पर इस वक्त की ताजा अपडेट के साथ हाजिर हैं हम। मैं हूं अनुपम पाठक अपनी साथी मुदिता के साथ। आज का दिन भारतीय चुनौती के हिसाब से देखें तो लगभग अवसान की ओर है। लगभग सभी स्पर्धाएं पूरी हो चुकी हैं। बहुत शानदार दिन रहा है। ऐसा दिन जिसकी उम्मीद हर खेल प्रेमी करता है और हर खिलाड़ी करता है। बहुत ही शानदार दिन रहा है। लेकिन अभी एक मुकाबला चल रहा है टेनिस में। टेनिस में आज सुमित नागल ने अपना मैच जीत लिया है। इसके अलावा डबल्स में दक्षिणेश्वर सुरेश और यूकी भामरी हार गए थे। लेकिन यूकी भामरी अगर दो मैच एक साथ हो तो बीच में गैप देना होता है, इसलिए उनका मैच अब चल रहा है, इस समय ऑन है। क्या स्थिति है जानते हैं मुदिता से।
2: जी, टेनिस के मिक्स डबल्स के दूसरे दौर में यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले का मुकाबला चाइनीज ताइपे के सू वेसिए और चुन सिन सेंग की जोड़ी से जारी।

0: भी है और पहला सेट भारतीय जोड़ी 3-6 से हार गई है, लेकिन दूसरे सेट में अभी वो 1-0 से लीड कर रही है। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि मिक्स डबल्स में भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। 2023 में ऋतुजा भोसले और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने चाइनीज ताइपे को फाइनल में हरा कर खिताब जीता था।
1: तो शायद वो दास्तान इनके रैकेट में और दम भरेगी। वापसी अच्छी की है, देखते हैं क्या होता है। अगली अपडेट में हम आपको फिर बताएंगे, लेकिन अब चर्चा है, जाहिर सी बात है पूरे देश में चर्चा है। हम एक बार बार बार करना चाहेंगे, आज का दिन बहुत अच्छा रहा है। 3 स्वर्ण पदक आए हैं आर्चरी में, यानी कि तीरंदाजी में। कंपाउंड की स्पर्धाएं थी, कंपाउंड में भारत जबरदस्त फोर्स बन चुका है। आज 3 स्पर्धाओं में भारत उतरा, 3 स्वर्ण पदक पाए और तीनों में डिफेंडिंग चैंपियन भी था।
0: जी बिल्कुल, और शूटिंग में आज एक और स्वर्ण पदक के साथ भारत ने शानदार सफलता हासिल की है। मिक्स टीम ट्रैप इवेंट में नीरू ढांडा और कायनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने फाइनल में कड़ी टक्कर दी और कतर और चीन से आगे टॉप पर रही ये जोड़ी। ट्रैप शूटिंग में भारत का 3रा मेडल था। इसके पहले महिलाओं के टीम इवेंट में नीरू ढांडा, आशिमा अलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने सिल्वर और महिलाओं के इंडिविजुअल इवेंट में नीरू ढांडा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। और इसके साथ ही भारत का ये सफल ट्रैप कैंपेन आज खत्म हो गया है। लेकिन शूटिंग में ही 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेंस इंडिविजुअल के क्वालिफिकेशन राउंड में अनीश भानवाला 290 के स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रहे।
1: और कुश्ती में भी बहुत अच्छी खबर आई है। आज कुश्ती में ग्रीको रोमन की स्पर्धा थी और महिलाओं में निशा थी। निशा 68 किलोग्राम भार वर्ग में रिपेचास में पहुंची थी, लेकिन वहां पर परास्त हो गई। और ग्रीको रोमन 87 किलोग्राम में भारत के सुनील कुमार वो जापान के ताइजो योशिदा से परास्त हुए। लेकिन हम आपको थोड़ा सा बता दें, रिपेचास होता क्या है। होता यह है कि अगर आप अपनी कुश्ती हार जाते हैं तो भी आपको मौका मिल सकता है। अगर आप जिससे हारे हैं वो बंदा अगर फाइनल तक पहुंचता है, तो जितने लोग उससे हारे हैं उनके बीच में फिर से मुकाबला होता है और उनमें जो विजेता होता है उसको कांस्य पदक के लिए भिड़ने का मौका मिलता है। तो इसके चलते सुनील को फिर मौका मिला, निशा को भी था, वो आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन सुनील ने तजाकिस्तान के मोहम्मद सुल्तान ज़ादा को 9-0 से टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर आसानी के साथ परास्त किया और भारत को कांस्य पदक दिलाया।
0: जी, और बॉक्सिंग में भी भारत के लिए आज अच्छा दिन रहा। मुक्केबाजी में भारत ने आज 2 कांस्य पदक हासिल किए। प्रिया घनघस ने महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में, वहीं कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग गोल्ड मेडल बाउट में पहुंच गई हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की नतालिया बोगदानोवा को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हराया। और 16 साल में अनुपम, ये पहली बार हो रहा है कि एशियन गेम्स के फाइनल में भारत के 1 से ज्यादा बॉक्सर होंगे।
1: बिल्कुल, हम पिछले बार की बात करें तो पिछली बार 4 पदक थे, 1 रजत पदक था लवलीना का, जिसको सब लोग चाहेंगे। आज की बाउट बहुत बहुत मुश्किल थी उनके लिए, बड़ी मुश्किल से 3-2 के अंतर से वो जीत पाई, लेकिन स्वर्ण पदक में निशाना साधेंगी, बहुत अच्छी लड़ाई लड़े। और इसके पहले 2023 की अगर हम बात करें, 22-23 में जो हुआ था, 22 के खेल 23 में हुए थे, प्रीति पवार को कांस्य पदक मिला था, निखत जरीन को मिला था, नरेंद्र बेरवाल को मिला था, लेकिन इस बार 3 तो हमारे फाइनल में ही खेल रहे हैं, यानी हमें पदक और मिलने हैं और 3 कांस्य पदक तो आ ही चुके हैं।
0: जी बिल्कुल, और स्क्वाश में भी पुरुष और महिला दोनों टीम्स ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली और साथ ही मेडल भी पक्का कर लिया है। पुरुष टीम का अगला मुकाबला मलेशिया से होगा, वहीं सेमीफाइनल में महिला टीम का मुकाबला हांगकांग से होगा।
1: और हॉकी की बात किए बिना हम कैसे रह सकते हैं। अभी हॉकी बस थोड़ी देर पहले समाप्त हुई है और भारत का जो मुकाबला था दक्षिण कोरिया के साथ, भारतीय लड़कियों का जबरदस्त मुकाबला, हाफ टाइम तक तो बिल्कुल बराबरी पर था। लग रहा था इतने गोल ठोकने वाली भारतीय टीम क्या करेगी, इसमें इतनी बड़ी चुनौती मिल रही। लेकिन उसके बाद जो दूसरा हाफ था, यानी कि 3रा क्वार्टर और 4था क्वार्टर, उसमें भारतीय लड़कियों ने जबरदस्त खेल दिखाया, 2-0 से बढ़त हासिल की और इंशिका ने पहला गोल किया पेनल्टी कॉर्नर से। उसके बाद कप्तान सलीमा टेटे ने फील्ड गोल किया था, 2-0 से भारत जीत गया है। और हॉकी में कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, उसकी चर्चा अगली अपडेट में।
0: जी, और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, ठीक 7:30 बजे हम फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: हम साथ साथ।

छायालोक लेकर चैनी का हाजिर है। बहुत बहुत स्वागत आप सबका, नमस्कार। और मीत मुझे तो मिल गया मेरे मन का, आपसे जो मिली दिन बन गया बस। ऐसा ही लगता है जब जब आपसे मिलने आती हूँ, सुनती हूँ आपके साथ मिलकर ये खूबसूरत नगमे। और आज बुधवार की शाम है तो छायालोक में हम साथ साथ इस विषय पर होगी बातचीत और सुनेंगे हम कुछ बेहतरीन खूबसूरत हिंदी फिल्मी गाने। और आज का क्या विषय है, कौन है साथ साथ, कुछ समझ में आया क्या ये पहला गाना सुनकर? वैसे समझ में कुछ नहीं आएगा क्योंकि इस पहले गाने की अगर मैं बात करूं तो अभिमान फिल्म से था, अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था, निर्देशक इस फिल्म के ऋषिकेश मुखर्जी थे और मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था, सचिन देव बर्मन ने सुरों से सजाया था। तो यहाँ इतने सारे जो नाम हैं, किशोर कुमार ने गाया था, इतने सारे नामों में हम साथ साथ हैं कि जो जोड़ी है उसमें एक नाम केवल रह जाएगा, वो है ऋषिकेश मुखर्जी का, क्योंकि आज है उनकी 104th बर्थ एनिवर्सरी। 104 साल के आप हो गए, आज हमारे दिलों में आप बसते हैं। क्या हुआ अगर दुनिया में नहीं रहे तो? सच में मुझे लगता है कि कलाकारों की बर्थ एनिवर्सरी नहीं होनी चाहिए, केवल बर्थडेज होने चाहिए, क्योंकि वो चले जाने के बाद भी उनका जो काम है, उनकी जो कला है, जो आर्ट है, वो हमारे बीच में जीवित रहता है। इसी तरह से ऋषिकेश मुखर्जी का भी हम कह सकते हैं कि आज बर्थडे ही है, बर्थ एनिवर्सरी नहीं। तो कौन है उनके जोड़ीदार, हम साथ साथ में कौन है उनके साथ? अमिताभ बच्चन नहीं है। ये गाना बस कह सकते हैं कि समा बांधने के लिए एकदम पहला गीत, एक सुपरहिट फिल्म का गाना, जो फिल्म हमारी जहन में बसी हुई है उस हिसाब से ये गाना मैंने लिया। लेकिन जिनके साथ एक्चुअल जोड़ी की बात मैं करूंगी ऋषिकेश मुखर्जी की, उनकी इमेज ऐसी रही मोटे तौर पर, आम तौर पर, जहाँ पर उनको देखा गया एक बेहद हैंडसम अभिनेता के तौर पर, जो बहुत अधिक टफ एक आदमी प्रतीत होता था, एक्शन करने वाला, जिसको ही मैन कहा जाए, ऐसा एक अभिनेता। लेकिन जब जब वो ऋषिकेश मुखर्जी के साथ आए फिल्मों में तो अलग ही उनका रूप रहा। और ऋषिकेश मुखर्जी ने इस अभिनेता को इतनी बेहतरीन ड्रामा फिल्म्स में कास्ट किया, जहाँ इन फिल्मों में कहते हैं ना, वो डीपली सोलफुल एक अपील थी इन फिल्मों में, और बहुत इंटेंस ये फिल्मी रहीं। इसके अलावा कुछ हिस्टोरिक कॉमेडीज भी रहीं, यानी जब जब इस्तेमाल किया उनका जो रूप रहा, उनका जो पसौना, जो इमेज रहा, उसको तोड़ मरोड़ कर ऋषिकेश मुखर्जी ने इस अभिनेता को इस्तेमाल किया। आप अगर अभी तक नहीं समझे हैं तो बता देती हूँ, और जो समझदार हैं वो समझ गए, जिन्होंने फॉलो किया है ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों को, उनके काम को, वो समझ गए कि मैं बात कर रही हूँ धर्मेंद्र की। अच्छा, दोनों की एक साथ एकदम फुल कोलैबोरेशंस की अगर मैं बात करूं, यानी फिल्म में मेन लीड में धर्मेंद्र हों, ऐसी फिल्मों की अगर मैं बात करूं, ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित ऐसी 6 फिल्में हैं। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में मैं कुछ ऐसी फिल्मों की भी बात करूंगी जहां स्पेशल अपीयरेंस है, या फिर ऐसी एक बड़ी ही प्रसिद्ध फिल्म, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ ऋषिकेश मुखर्जीज करियर, जहाँ पर धर्मेंद्र नहीं थे और ना होने का उनको इतना अफसोस था कि उन्होंने क्या नहीं किया। मतलब एक रात तो उन्होंने मतलब बवाल काटा। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किस फिल्म के कारण हुआ था, वो सब अलग बातें। लेकिन आज जैसे कि मैंने कहा, भूमिका बद गई है, हम साथ साथ में ऋषिकेश मुखर्जी और धर्मेंद्र साथ साथ ऐसी फिल्मों की बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले चलिए सुनते हैं ये गीत अनुपमा फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में। संगीतकार इस खूबसूरत से गीत के हेमंत कुमार, और आवाज है जैसे कि मैंने कहा लता जी की, कैफी आजमी ने गीत को लिखा था। अनुपमा का ये गीत सुनते हैं, फिर इस फिल्म के बारे में चंद बातें आपके साथ मैं जरूर साझा करूंगी।

साथ। तो कह सकते हैं हम कि धर्मेंद्र जो है वो डायरेक्टर्स एक्टर हैं। जिस तरह से जिस निर्देशक ने उनको ढाला ढालने की कोशिश की, जिस तरह का जामा पहनाया, जिस तरह के किरदार उनसे करवाए, वो उसी रंग में ढल गए। तो कहना चाहिए, कह सकते हैं यकीनन कि किस तरह के वर्सटाइल अदाकार रहे धर्मेंद्र। हम केवल उनके गुड लुक्स पर जाते हैं, लेकिन एक्टिंग स्किल्स की बातें और ज्यादा और अधिक होनी चाहिए। ऋषिकेश मुखर्जी की अनुपमा में हमने उनको देखा था, जिसका गाना हमने अभी सुना। अशोक के किरदार में धर्मेंद्र नजर आए थे। 1966 की फिल्म थी और साथ में दोनों ने पहली बार इसी फिल्म के लिए कोलैबोरेट किया था। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने एक बेहद जेंटल एक व्यक्ति का किरदार निभाया, जो लेखक है, कवि है। और इस फिल्म की जो प्रोटैगनिस्ट है अनुपमा, उसके लिए वो एक बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। अनुपमा एक ऐसी लड़की है जो ट्रॉमेटाइज्ड है, जो एक ऐसे सदमे की शिकार है, एक इस तरह की घटना का उसको दोषी ठहराया जाता है जिसने वो कभी किया ही नहीं। फिल्म अगर आपने देखी हो तो याद आएगी कहानी की किस तरह उसके जो पिता है उसी से प्यार नहीं मिल पाता है। तो इस तरह की एक लड़की जो बेहद चुपचाप है, जहाँ से उसको कंफर्ट मिलना चाहिए, जहाँ से उसको भरोसा मिलना चाहिए, वो जो जगह उसकी खाली है, और वो जगह फिल करता है धर्मेंद्र का किरदार। फिर 1968 में हमने उनको देखा बिपिन चंद्र के किरदार में। धर्मेंद्र ने बिपिन चंद्र का किरदार निभाया 1968 की फिल्म मजली दीदी में। एक इंटेंस फैमिली ड्रामा फिल्म थी ये, और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी पर आधारित थी। मीना कुमारी इस फिल्म में थी धर्मेंद्र के साथ। और इस फिल्म का एक गीत मैं आपको ज़रूर सुनवाना चाहूँगी, बहुत रेयर एक गाना जो शायद हम रेडियो पर कम ही सुनते हों। चलिए सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है मछली दीदी, और इस गीत को लिखा था नीरज ने और स्वरबद्ध किया हेमंत कुमार ने स्वयं ने। चलिए सुनते हैं। आप लोग छाया लोग सुन रहे हैं, और आज बुधवार की शाम है, तो हम साथ साथ के अंतर्गत बात हो रही है ऋषिकेश मुखर्जी और धर्मेंद्र की।

और अब बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो ऋषिकेश मुखर्जी ने खुद की भी पसंदीदा फिल्म कहा है कई बार जब उनसे पूछा गया है, और इस फिल्म को समालोचकों ने बहुत सराहा। धर्मेंद्र की कही जाती है कि ये सबसे बेहतरीन करियर परफॉर्मेंस रही। मैं बात कर रही हूँ सत्यकाम की। सत्यकाम 1969 में रिलीज हुई थी और सत्यप्रिय आचार्य के रोल में धर्मेंद्र नजर आए थे, एक ऐसे अनकॉम्प्रोमाइजिंग ऑनेस्ट इंजीनियर का रोल उन्होंने किया था जो करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं, और बहुत खूबसूरती से इस फिल्म को डील किया। जिस तरह से वो अपनी हर फिल्म में ऋषिकेश मुखर्जी का जो अप्रोच होता था एक कहानी के प्रति, जिस तरह से वो इस एक किसी एक पर्टिकुलर कहानी को, उसके किरदारों को डील करते थे, जो बहुत हो सकता है कि लार्जर देन लाइफ हो, लेकिन बहुत करीब भी होते थे ये किरदार असल जिंदगी के। ऐसी ही एक फिल्म सत्यकाम। सत्यकाम का ये गीत आपको मैं सुनवाती हूँ किशोर कुमार मुकेश महेंद्र कपूर की आवाज़ में। कैफी आजमी ने गीत लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और इस गीत को सुनने के बाद हम चले जाएंगे एशियन गेम्स के अपडेट्स की ओर, जो आप सुन सकते हैं 7:30 पर। आज तो कमाल ही हो गया है, अच्छी अच्छी खबरें आई हैं, बहुत सारे मेडल्स आए हैं, तो चलिए जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग सुनेंगे सत्यकाम फिल्म का ये गाना, जिंदगी है क्या, बोलो जिंदगी है क्या।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: नमस्कार, आज की अंतिम अपडेट 20वें एशियाई खेलों पर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनुपम पाठक अपनी साथी मुदिता के साथ। आज का दिन भारत के लिए बहुत अच्छा रहा है, लेकिन सबसे पहले वो खबर जो अभी तक रह गई क्योंकि ये मैच अभी तक चल रहा था। टेनिस में मिश्रित युगल में यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले, ये भारत की ओर से खेल रही थी। बस अभी अभी मैच समाप्त हुआ है और इसमें भारतीय जोड़ी ने जीत हासिल की 6-3, 6-4 सीधे सेटों में। और अब बात करेंगे आज के दिन की। शानदार दिन रहा है, शुरुआत कैसी रही, किसने की, कौन कौन से पदक है, आपको पता है लेकिन बार बार सुनना अच्छा लगेगा, मुदिता बताएंगी।
2: जी बिल्कुल अनुपम, और आज की सुबह ही शुरुआत हुई है स्वर्ण से, यानी स्वर्णिम सुबह रही है आज की। और ये हुआ था भारतीय महिला कंपाउंड आर्चरी टीम की बदौलत। चिकिता तनिपार्थी, प्रतिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेंडम की भारतीय तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद कंपाउंड मिक्स टीम का गोल्ड मेडल भी आया, चिकिता तनिपार्थी और साहिल जाधव ने उसे जीता। और तीसरा गोल्ड मेडल कंपाउंड आर्चरी में आया भारतीय पुरुष टीम का, जिसमें साहिल जाधव, कुशल दलाल और टी गणेश मणिरत्नम की तिकड़ी ने फाइनल में चीन को हराया।
1: जी, तीन से पेट नहीं भरता। तो चौथा गोल्ड मेडल आया शूटिंग से। शूटिंग में कल की जो हमारी हीरोइन थी कहना चाहिए, नीरू डांडा, उन्होंने आज अपनी जोड़ी बनाई अनुभवी काइनन चेनाई के साथ। और डबल ट्रैप में ये मिक्स स्पर्धा थी और इसमें इन्होंने क्या शानदार प्रदर्शन किया। सीरीज 2 और 3, इन दोनों में 10 में 10 निशाने, कमाल की बात। कुल स्कोर इन्होंने बनाया 34, जो एशियन रिकॉर्ड है वो अभी इसी साल कुवैत ने बनाया था 30 का, उससे 4 ज्यादा। और कुवैत इस बार भी था, वो दूसरे स्थान पर आया। आगे रही भारतीय जोड़ी, स्वर्ण पदक आज का चौथा।
2: और बॉक्सिंग में भारत ने आज 2 कांस्य पदक हासिल किए। प्रिया घनगस ने महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में, वहीं कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल बाउट में पहुंची। सेमीफाइनल में उन्होंने कजाकिस्तान की नतालिया बोगदानोवा को हराया। परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल पहले ही फाइनल में पहुंच चुके हैं, तो 16 साल में पहली बार एशियन गेम्स के फाइनल में भारत के 1 से ज्यादा बॉक्सर्स पहुंचे हैं।
1: बिल्कुल, अब तक अगर हम पिछले गेम्स की बात करें तो कुल 4 पदक थे, 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक। इस बार 6 पदक होने और देखना ये है क्या बात है, अगर 3 स्वर्ण हो जाएं तो क्या कहना, भारतीय झोली बहुत बड़ी हो जाएगी। किस्मत अगर मौके दे तो उसको पूरी ताकत से भुला लेना चाहिए, ये साबित किया सुनील ने आज ग्रीको रोमन कुश्ती 87 किलोग्राम भार वर्ग में, जहां पर वो हार गए थे। लेकिन चूंकि उनके विपक्षी फाइनल में पहुंचे तो उनको एक मौका और मिला रिपचैस में, जिसको भुनाते हुए उन्होंने आखिर में तजाकिस्तान के मोहम्मद सुल्तान सोदा को 9-0 के स्कोर से परास्त किया टेक्निकल सुपीरियरिटी में, और भारत के लिए कांस्य पदक हासिल किया, आज का 3रा कांस्य पदक।
2: जी बिल्कुल, और स्क्वाश में भी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने के साथ ही मेडल भी पक्के कर लिए हैं। कल उनका सेमीफाइनल मुकाबला होगा, पुरुष टीम का होगा मलेशिया से और महिला टीम का मुकाबला हांगकांग से होगा।
1: और हॉकी के बिना बात अधूरी रह जाएगी, हॉकी जो हमारे साथ खून का रिश्ता है जिसका। हॉकी में भारतीय महिलाओं ने भी गजब किया है, पिछली बार उनका कांस्य पदक था, इस बार वो फाइनल में पहुंच गई हैं। शानदार, इस बार गोलों की झड़ी लगाई थी आज, लेकिन वो झड़ी तो रुकी लेकिन जीत का सिलसिला नहीं। पहले दोनों क्वार्टर बिना गोल के रहे, लगा बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है। हालांकि पेनल्टी कॉर्नर 9 कमाए थे लेकिन उसको गोल में बदल नहीं पाई थी। लेकिन तीसरे क्वार्टर के खत्म होते होते भारत ने जो बढ़त हासिल करनी शुरू की, सबसे पहले इंशिका ने गोल किया पेनल्टी कॉर्नर से, बिल्कुल नए वेरिएशन के साथ गोल हुआ था, बस देखने लायक था ये। और उसके बाद सलीमा टेटे ने बस 4 मिनट बाद एक फील्ड गोल, शानदार फील्ड गोल किया जो डिफ्लेक्शन के साथ चला गया गोल पोस्ट के भीतर। भारत 2-0 से इस मैच को जीत लिया। 2 अक्टूबर के दिन फाइनल मैच, भारत के स्वर्ण के लिए दुआ करना शुरू कर दीजिए।
2: जी बिल्कुल, लड़कियों ने स्वर्ण के लिए अपनी छलांग लगा दी है। अब कल बारी है मेंस हॉकी टीम की, जो सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना करेगी। एक और सेमीफाइनल कल खेला जाने वाला है क्रिकेट का, मेंस क्रिकेट का, जिसमें भारत का सामना होगा श्रीलंका से।
1: तो कुल मिलाकर आज बस यहीं तक। अब आज के अपडेट तो समाप्त होते हैं, लेकिन कल हमारे साथ रहना मत भूलिएगा। कल सुबह 9:30 बजे हम लोग फिर आपके साथ होंगे
2: जी, और उसके पहले आज रात 10 बजे हमारा डेली अपडेट का कार्यक्रम, जिसमें हम पूरे दिन का लेखा जोखा आपको देंगे, भारतीय खिलाड़ियों के मेडल्स, उनके अचीवमेंट्स, उनके प्रदर्शन के बारे में, वो सुनना मत भूलिएगा। और कल सुबह 9:30 बजे हम फिर से आवरली अपडेट के साथ हाजिर होंगे। तो अब मुझे यानी मुदिता और अनुपम पाठक को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर।

0: दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छाया लो। हम साथ साथ
1: हैं आज एफएम रेनबो पर, मैं चैनिका और आप, और बातें कर रहे हैं ऋषिकेश मुखर्जी के जन्मदिन पर उनके साथ धर्मेंद्र की जोड़ी की। 7:36 और देखते देखते 37:02 फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में एकदम सही समय। अच्छा, एशियन गेम्स अपडेट्स से पहले हम बात कर रहे थे अनुपमा के बाद हमने बात की मजली दीदी की और उसके बाद सत्यकाम की। सत्यकाम की एक और ख़ास बात थी, वो ये थी कि अनुपमा का जैसे समझ लीजिए रीयूनियन हो गया, क्योंकि वो जो पावर हाउस क्रिएटिव टीम थी ना, एकदम सेम रही इस फिल्म में भी। धर्मेंद्र तो थे ही, शर्मिला टैगोर थी, साथ ही डायलॉग राइटर राजेंद्र सिंह बेदी थे और गीतकार कैफी आजमी। यानी दोनों फिल्मों में, अनुपमा और सत्यकाम दोनों में, ये जो आर्टिस्ट्स थे ये कॉमन थे। और आपको बताना चाहूंगी कि इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था, बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी, इस कैटेगरी में ये सम्मान मिला था सत्यकाम को। और एक कह सकते हैं कि ये फिल्म धर्मेंद्र की करियर का एक मील का पत्थर फिल्म साबित हुई, क्योंकि यही वो समय था, वो दौर था जब उनको टाइपकास्ट किया जा रहा था मसल बाउंड एक्शन रोल्स में, कि वो तो हीमैन जैसे दिखते हैं, हीमैन जैसी उनकी मारधार वाली जो एक्टिंग है वो भी है, बहुत स्किल है, तो एक्शन हीरो ही है ये मूलतः। लेकिन इस फिल्म ने दिखा दिया कि उनकी कितनी अधिक डेप्थ है बतौर अभिनेता, और कितना बड़ा उनका रेंज है, ड्रामेटिक रेंज है बतौर कलाकार, बतौर अभिनेता। और इसका श्रेय जाता है ऋषिकेश मुखर्जी को। अच्छा, सत्यकाम के बाद चलिए अब बात करते हैं गुड्डी की। गुड्डी के बारे में मैं क्या ही कहूँ, हर फिल्म की कुछ ना कुछ एक, मतलब कहते हैं ना कि एक बैक स्टोरी होती है, तो ऋषिकेश मुखर्जी की इन फिल्मों की भी कहानी है, एक कोई ऐसी बात है जो हर फिल्म के साथ जुड़ी हुई है, तो गुड्डी की भी एक कहानी है। गुड्डी में मैं आपको बताऊं कि शोमित भोंजन ने जो किरदार निभाया था वो एक्चुअली अमिताभ बच्चन निभाने वाले थे। 1971 की ये फिल्म है और यहाँ हमने देखा जया बच्चन थी इस फिल्म में, उस वक्त जया भादुड़ी थी और उनके साथ थे धर्मेंद्र। धर्मेंद्र पर जया को क्रश होता है, ऐसी ही फिल्म है। धर्मेंद्र अपने खुद के किरदार में इस फिल्म में नजर आ रहे हैं और शोमित भोंजन का जो किरदार था वो मिलने वाला था अमिताभ बच्चन को, और 10 दिन उन्होंने शूटिंग भी कर ली और उसके बाद लगा ऋषिकेश मुखर्जी को कि एक जाना पहचाना चेहरा अगर इस रोल में कास्ट किया जाए, शोमित भोंजन वाला जो कैरेक्टर है, तो वो फिर लगेगा कि एक और स्टार आ गया है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर धर्मेंद्र को एज अ स्टार पोर्ट्रेट किया जा रहा था। तो 10 दिन बाद अमिताभ बच्चन से ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा कि वो फिल्म छोड़ दें, और साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे उनके साथ वो और भी बहुत सारा काम करेंगे। तो ये है बैक स्टोरी गुड्डी की, और हम जानते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री, कितनी सारी फिल्में एक साथ ऋषिकेश मुखर्जी अमिताभ बच्चन ने की हैं। किसी और दिन इस विषय पर हम बात करेंगे, एक और पूरा कार्यक्रम बन सकता है, लेकिन आज तो धर्मेंद्र की बात हो रही है तो गुड्डी का जिक्र भी होना ही चाहिए। चलिए सुनते हैं फिर गुड्डी फिल्म का ये गीत वाणी जयराम की आवाज में। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी एफ एम रेनबो कोलकाता।

गुड्डी का ये गीत वैसे तो फिल्माया गया था जया बहादुरी पर, लेकिन धर्मेंद्र इस फिल्म का एक इंटेग्रल हिस्सा थे। एक ऐसा अभिनेता जो एक लड़की की जो भावनाएं हैं उनको बदलने की कोशिश करता है, जो सिनेमेटिक इल्यूजन है उस लड़की के मन में, जिस तरह का वो क्रश है उस किरदार के, हीरो के किरदार की तरफ, उसको किस तरह से वो तोड़ने की कोशिश करता है, उसको असल जिंदगी में वापस जोड़ने की कोशिश करता है, इस पर ये फिल्म आधारित थी। अच्छा, अब एक और फिल्म का जिक्र यहाँ करना लाजमी है, वो है प्यारे मोहन उर्फ डॉक्टर परिमल त्रिपाठी की कहानी। याद आई आपको ये फिल्म चुपके चुपके, जो 1975 में रिलीज हुई थी। इम्पेकेबल कॉमेडी टाइमिंग अगर किसी की हो सकती है तो वो धर्मेंद्र की हो सकती है, इस फिल्म ने हमको बताया, जहाँ पर वो एक बॉटनी के प्रोफेसर के किरदार में हैं, लेकिन अपनी पत्नी के जीजा जी को थोड़ा सा परेशान करने वो एक ड्राइवर का रूप धारण करते हैं, और किस तरह से फिर कहानी आगे बढ़ती है। बेहतरीन एक फिल्म, बांग्ला फिल्म से प्रेरित फिल्म, हम सब जानते हैं छद्मवेशी, वैसी सिमिलर सी कहानी, लेकिन फिल्म बहुत जबरदस्त और उतने ही जबरदस्त धर्मेंद्र इस फिल्म में हमको नजर आए। चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये वाला गाना मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में।

सुन रहे हैं आप छह लोग, हम साथ साथ लेकर चैनिक हाजिर है आज। सचिन देव बर्मन का संगीत था चुपके चुपके फिल्म में, और गीतकार मैं आपको बताऊं अगर तो आप यकीन करेंगे क्या, कभी कभी हम इतनी सारी पुराने गीतों में कंफ्यूज हो जाते हैं और लगता है कि किसने इतने सुंदर अल्फाज लिखे होंगे। नाम तो कई सारे आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये जो गाना हमने सुना वो आनंद बख्शी ने लिखा था, चुपके चुपके फिल्म का ये गाना आनंद बख्शी और सचिन देव बर्मन की जोड़ी ने तैयार किया। और अगला गीत जो मैं आपको सुनवाऊंगी वहां पर आनंद बख्शी एक बार फिर से हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। फिल्म का नाम है चैताली। चैताली के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो ये कहूंगी सबसे पहले कि बिमल रॉय इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। कहानी ली गई थी आशापूर्णा देवी के एक उपन्यास से, एकदम यही नाम उपन्यास का चैताली, और इस पर आधारित ये फिल्म थी। ऋषिकेश मुखर्जी ने ये फिल्म बनाई, एक ड्रामा फिल्म। ये भी उसी तरह से जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, एकदम साधारण से लोग, आम आदमी मेरी और आपकी तरह, वैसी एक कहानी। और मुख्य भूमिकाओं में धर्मेंद्र, सायरा बानू और प्रदीप कुमार नजर आए थे हमें। तो चलिए सुनते हैं ये

7:54 और 40 सेकंड्स देखते देखते हमारा ही जो समय है ये समाप्त होने वाला है। पहला घंटा समेटेंगे हम। चैनिका लेगी आपसे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक ऐसी फिल्म की बात मैं करना चाहूंगी जिस फिल्म पर ऋषिकेश मुखर्जी और धर्मेंद्र ने कोलैब नहीं किया, लेकिन इस फिल्म की कहानी जरूर धर्मेंद्र को सुनाई थी एक फ्लाइट में साथ उड़ने के दौरान। और धर्मेंद्र ने खुद अपने एक रियलिटी शो में, एक चैट शो में वो आए थे, तो उन्होंने बताया कि आनंद की कहानी, जी हाँ आनंद की मैं बात कर रही हूँ, आनंद की कहानी ऋषिकेश मुखर्जी ने सुनाई धर्मेंद्र को, किस तरह से वो किरदार जो है उसका ग्राफ डेवलप करेगा, क्या होगा। तो लगा था कि धर्मेंद्र को कि शायद वो इस फिल्म का हिस्सा बनेंगे, लेकिन हुआ नहीं। और बाद में उनको पता चला कि राजेश खन्ना के साथ ही फिल्म शुरू हो गई है। राजेश खन्ना से पहले भी तो बहुत सारे लोगों को ऑफर हुई, किशोर कुमार को ऑफर हुई, और अल्टीमेटली पहुंची राजेश खन्ना के पास। तो धर्मेंद्र इस फैसले से बहुत नाराज हुए और उन्होंने रात भर ऋषिकेश मुखर्जी को फोन किया। वो बार बार पूछ रहे थे कि जब उन्हें कहानी सुनाई गई थी और रोल के बारे में बताया गया था तो फिल्म राजेश खन्ना को क्यों दे दी गई। और बार बार ऋषिकेश उनसे कहते रहे फोन पर कि धर्म सो जा, सुबह बात करेंगे, लेकिन फोन कटते ही वो दोबारा कॉल कर देते, फिर वही सवाल पूछते कि ये फिल्म राजेश खन्ना को क्यों दे दी गई। अब दिलचस्प बात यह है कि इस घटना के बाद दोनों के जो रिश्ते थे वो खराब नहीं हुए और आगे चलकर ऋषिकेश मुखर्जी के साथ गुड्डी चुपके चुपके जैसी फिल्मों में काम किया था धर्मेंद्र ने। तो ये होती है रिलेशनशिप, प्रोफेशनल या पर्सनल, जो भी आप कहें, एक ऐसी बॉन्डिंग जो हो सकता

है कि कभी कभी थोड़ी सी पटरी से उतर जाए लेकिन वापस आ जाती है, क्योंकि जो रिश्ता होता है वो गहरा होता है। आज का ये कार्यक्रम आनंद फिल्म से ही मैं रैप अप करना चाहूंगी, जहां धर्मेंद्र नहीं है लेकिन ये कहानी है और लेगेसी है ऋषिकेश मुखर्जी की। ये गाना अगर ना मैं सुनवाऊं आपको तो कार्यक्रम आज का अधूरा रहेगा। मन्ना दी की आवाज में आनंद का ये गीत आप सबके लिए

सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के दी रियल रेडियो 107 FM रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ हाजिर है आपकी अपनी आरजी फ्रेंड सिलेक्शन ऑफ पर्वत लेकर म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम छाया लोक। जी हाँ, आगाज करना चाहूंगी उस गीत के साथ जिसे हमने लिया है फिल्म परदेश से। सोनू निगम, हेमा सरदेसाई, शंकर महादेवन की आवाज में इस खूबसूरत गीत को आप तक मैं पहुंचा रही हूं 107 FM रेनबो के जरिए, यानी कि वही चैनल जहां हम और आप कनेक्ट होते हैं हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल तक का हमारा कनेक्शन होता है। और अभी जो गाना आप सुनेंगे बड़ी खूबसूरती से इसे कलमबद्ध किया है आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

ये जो बस तुम ही रहते हो, ये कोई और नहीं बल्कि म्यूजिकली योर्स है, जो आपके दिल में रहता है, आपके धड़कनों में बसता है। वैसे बता दूं, ये खूबसूरत सा गीत आपने सुना अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म धड़कन से। समीर ने इसे कलमबद्ध किया है और संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। और अब रुक करते हैं अगले गीत की ओर। क्यों इश्क हुआ, कैसे हुआ, ये मैंने आपसे पूछा नहीं है। अगला जो गाना आप सुनिएगा ना, उसके बोल हैं। फिल्म इश्क से सुनिए उदित नारायण और विभा शर्मा की आवाज में इस गीत को। लिरिसिस्ट जावेद अख्तर, कंपोजर अनु मलिक।

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: आई लव यू।

इस म्यूजिकल रोमांटिक ट्रैक को आपने सुना उदित नारायण और विभा शर्मा की आवाज में, और बड़ी खूबसूरती से जावेद अख्तर ने कलमबद्ध किया और संगीतबद्ध किया अनु मलिक ने, फिल्म का नाम इश्क। और अब आगे बढ़ते हुए अगला गाना आप सभी के लिए फिल्म यस बॉस से, और हमारे लिए तो हमारे श्रोता जो है वही बॉस होते हैं ना, यानी कि आपका फुल टू मनोरंजन होते रहे। यूं तो आजकल के दौर में किसी चीज की गारंटी नहीं है, हर जगह वारंटी रहता है, लेकिन म्यूजिकली योर्स पर इंफरटेनमेंट का जो है ना तगड़ा गारंटी होता है। अगला गाना आप सभी के लिए कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज में, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार जतिन ललित, फिल्म का नाम यस बॉस।

सुबह की घड़ी में समय उछला है 8:29 और फिलहाल आप जो है जुड़ चुके हैं दिल से दिल तक वाले चैनल पर, यानी कि 107 एफएम रेनबो पर जुड़ रहता है आपके साथ 24/7 ऑल डे ऑल नाइट, और है कहता क्या है म्यूजिकली योर्स। अब म्यूजिकली योर्स अगर रहे आपके साथ तो भला आप हमेशा ही जो है वो खुशहाल रहते हैं, क्योंकि जहां संगीत होता है वहां दुख दर्द स्ट्रेस के लिए कोई जगह नहीं होती है, एकदम से उड़नछू हो जाता है। चलिए आपको अगला गाना मैं सुनवाती हूँ उस फिल्म से जो कि रिलीज हुई थी इन द ईयर 1994, और उस फिल्म में एक गाना था, उस गाना का ऐसा जादू था कि जब भी कोई लड़का देखता था लड़की को तो बस तुरंत क्या कहता था, ओले ओले।

ओले ओले। अभिजीत और साथियों की आवाज में इस गीत को आपने सुना, फिल्म ये दिल लगी से, गीतकार समीर, संगीतकार दिलीप सेन, समीर सेन। और अगला ट्रैक ओके जानू फिल्म से, द हम्मा सॉन्ग, जुबेर नौटियाल और शाशा तिरुपति की आवाज में।

इस खूबसूरत से गीत को आपने सुना अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में, और फिल्म का नाम कभी खुशी कभी गम, गीतकार अनिल पांडे, संगीतकार संदेश शांडिल्य। ऐसा है फ्रेंड्स, आपने ट्यून कर रखा है सिटी ऑफ जॉय कोलकाता का दी रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो, जहां आप और हम कनेक्ट होते हैं दिल से दिल तक, और सुन रहे हैं आपका ही पसंदीदा म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम छायालोक। और छायालोक में अगला गीत आप सभी के लिए फिल्म कुछ कुछ होता है से उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, गीतकार समीर, संगीतकार जतिन ललित।

म्यूजिकली योर्स, पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका ही पसंदीदा म्यूजिकल एनर्जी बूस्ट प्रोग्राम छायालोक। और ऐसा है कि स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 8:53:37, यानी कि 9 बजे कार्यक्रम को विराम देना होता है हर रोज जो छायालोक आप सुनते हैं। और आज भी उस नियम का हम पालन करेंगे। वैसे दिल तो नहीं चाहता कि आप सभी को मैं छोड़ के जाऊं, लेकिन क्या है ना कि नियम का पालन करना बहुत ही अनिवार्य होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। और चलते चलते आप सभी के लिए एक बेहद खूबसूरत गीत प्ले ज़रूर करूंगी, फिल्म सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में इस गीत को सुनेंगे। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार हैं राजेश रोशन, और फिल्म का नाम आपको बताया ही करण अर्जुन। और बस हमेशा की तरह यही कहूंगी कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, और चारों तरफ खुशियों के फूल बिखेरते रहिए। और अब समय उचला है कि आपकी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत आपसे कहेगी टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।

0: IT名古屋。
1: खेलों का इतिहास पुराना है, लेकिन कुछ खेलों का इतिहास बहुत बहुत पुराना है। उनका प्रादुर्भाव मानव सभ्यता के विकास के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे दौड़कूद, कुश्ती, तीरंदाजी आदि। और अब ये खेल पूरा व्यवस्थित रूप लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय खेल मेलों की शान बनते रहे हैं। आज इन्हीं में से एक में 20वें एशियाई खेलों में भारतीयों ने देश की शान बढ़ा दी। आईची नगोया एशियन गेम्स में आज की स्पर्धाओं पर हाइलाइट्स कार्यक्रम के साथ हाजिर हैं हम। मेरा नाम है अनुपम पाठक, स्वागत है आपका। पहले हेडलाइंस। आर्चरी में आज के सभी 3 स्वर्ण पदकों पर भारतीयों का निशाना। शूटिंग में मिश्रित ट्रैप में नीरू ढांडा और कायनन चेनाई ने किया कमाल, स्वर्ण पदक पाया। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन फाइनल में पहुंची, 2 मुक्केबाजों को कांस्य पदक मिले। महिला हॉकी में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में धमाकेदार प्रवेश किया। तीरंदाजी में भारत ने पिछली बार 5 स्वर्ण पदक पाए थे। इन खेलों में इस बार हमने कई बार ऐसा देखा है कि जिन स्पर्धाओं में पिछली बार स्वर्ण पदक थे उनमें इस बार सोना अक्सर नहीं भी आया, लेकिन आज कंपाउंड की 3 स्पर्धाओं में भारत ने अचूक निशाने लगाए, परफेक्ट 10 बारंबार स्कोर किया और जब मैदान में उतरे जीत कर आए, स्वर्ण पदक के साथ आए। 3 स्वर्ण पदकों की सुनहरी दास्तान सुना रहे हैं रोहित भारद्वाज।
2: भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कंपाउंड टीम स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक पूरी की। महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तानी पार्थी और प्रीतिका प्रदीप की भारतीय तिकड़ी ने चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद चिकिता तानी पार्थी और साहिल जाधव की भारतीय मिक्स्ड कंपाउंड जोड़ी ने दक्षिण कोरिया को शूट ऑफ में हराया। मुकाबला 157-157 की बराबरी पर समाप्त हुआ और शूट ऑफ में भारत ने 20-19 से जीत दर्ज कर गोल्ड हासिल किया। पुरुषों की कंपाउंड टीम कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने चीन को 238-237 अंकों से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इस तरह कंपाउंड की 3 टीमों ने भारत को 3 अलग अलग गोल्ड मेडल जिताए। चिकिता और ज्योति सुरेखा साई के सोनीपत सेंटर में ट्रेन करती हैं और साइकिलिंग पे खेल मंत्रालय ने 22.19 करोड़ रुपए खर्च किए पिछले वर्ष, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर और नेशनल कोचिंग कैंप्स शामिल थे।
1: कल नीरू ढांडा ने ट्रैप में सोना जीता था, नया रिकॉर्ड बनाया था। अपने जबरदस्त फॉर्म को उन्होंने आज भी बनाए रखा, अपनी जोड़ी बनाई कायनन चेनाई के साथ। मिक्स ट्रैप स्पर्धा दूसरी और तीसरी सीरीज में उन्होंने 10 में 10 निशाने लगा दिए, नया एशियाई रिकॉर्ड और आज का 4th स्वर्ण पदक। हमारी रिपोर्ट पर यह निशाना है मुदिता का।
3: शूटिंग में आज एक और स्वर्ण पदक के साथ भारत ने शानदार सफलता हासिल की। मिक्स टीम ट्रैप इवेंट में नीरू ढांडा और कायनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने फाइनल में कड़ी टक्कर दी और 34 हिट लगाकर फाइनल स्टैंडिंग में कतर और चीन को पीछे छोड़ दिया। ट्रैप शूटिंग में यह भारत का 3रा मेडल है। इससे पहले महिलाओं के टीम इवेंट में नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने सिल्वर और महिलाओं के इंडिविजुअल इवेंट में नीरू ढांडा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसके साथ ही भारत का ये सफल ट्रैप कैंपेन आज खत्म हो गया। वहीं 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेंस इंडिविजुअल के क्वालिफिकेशन राउंड

0: में अनीश भानवाला 290 के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रहे।
1: हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले कायनन चेनाई के पिता भी ट्रैप के राष्ट्रीय चैंपियन शूटर रहे हैं, तो स्वाभाविक है चेनाई ने 10 साल की उम्र में ही गन थाम ली थी। एशियाई खेलों में जाने से पहले आकाशवाणी ने खास तौर पर उनसे मुलाकात की थी, आइए उस मुलाकात को ताजा करते हैं।
2: तैयारी तो बहुत अच्छा था इस बार। पहले हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप था 10 दिन, कोचेस के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, तो हम थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दिए प्रेपरेशन में। इस बार हमारा कोच भी बहुत स्ट्रिक्ट है प्रेपरेशन में, तो हमारा स्पोर्ट्स साइंस टीम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिए इस बार, क्योंकि जापान जा रहे हैं, इस बार चाइना नहीं जा रहे, और कंडीशंस डिफरेंट रहेगा, वेदर डिफरेंट रहेगा, फूड डिफरेंट रहेगा, अकोमोडेशन भी डिफरेंट रहेगा। ये मेरा तीसरा गेम्स है। व्हाट आई हैव सीन एटलीस्ट इन द camps and in the preparation to the games that everybody is putting their best foot forward, bahut zyada effort de rahe hain, bahut zyada training kar rahe hain, to kuch to positive aayega।
1: पुरुषों की तरह महिला हॉकी में भी भारतीय टीम गोलों की बौछार करते हुए सेमीफाइनल्स तक पहुंची थी, और आज सेमीफाइनल्स में उनके मुकाबले थी दक्षिण कोरिया की मजबूत टीम। गोल्स की झड़ी तो नहीं लगी, लेकिन लड़कियों ने मैदान पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा और 2-0 से कोरिया को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। पहले दोनों क्वार्टर्स मैच में गोल रहित रहे। भारत ने इस दौरान दबाव बनाया, 9 पेनल्टी कॉर्नर्स भी कमाए, लेकिन गोल नहीं कर सके। कोरियाई खिलाड़ी बेहतरीन रक्षण के साथ हमलों को नाकाम करते रहे और मौका मिलते ही प्रत्याक्रमण के मूव भी बनाते रहे। तीसरे क्वार्टर के समाप्त होने के ठीक पहले मिले एक पेनल्टी कॉर्नर पर भारत ने एक नया वेरिएशन ट्राई किया। दीपिका सहरावत ने शॉट लेने के बजाय इंचिका की ओर गेंद को पुश कर दिया, जिसने झपाक के साथ गोलकीपर को चकमा देकर गोल पोस्ट को खड़का दिया, पहला गोल। इसके ठीक 4 मिनट बाद ही कप्तान सलीमा टेटे ने गेंद को इंटरसेप्ट किया, बहुत तेजी के साथ सर्किल में घुसी और वहीं से तेज जन्नाटेदार शॉट लगाया, जो डिफेंडर से स्टिक से टकराकर डिफ्लेक्ट होता हुआ गोल पोस्ट में समा गया। भारत 2-0 से आगे हो गया और यही अंतिम स्कोर भी रहा। ये मैच खासा संघर्षपूर्ण जरूर रहा, लेकिन कभी भी दक्षिण कोरिया भारतीय गोल पोस्ट के लिए खतरा नहीं नजर आया। अगर कुल मिलाकर मैच के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 61% गेंद भारतीय नियंत्रण में रही और कोरिया सिर्फ 39% अपने पास गेंद को कब्जे में रख पाया। पेनल्टी कॉर्नर्स भारत ने 12 कमाए, जबकि कोरिया को सिर्फ 3 मिले। और अब फाइनल में भारत का मुकाबला होगा चीन के साथ, जिसने आज जापान को जो मैच हुआ उसमें गोल रहित मैच खेला। उसके बाद मामला गया पेनल्टी शूटआउट में, जहां पर चीन ने जापान को 4-2 से परास्त किया। स्वर्ण पदक के लिए भारतीय लड़कियां 2 अक्टूबर को मैदान में उतरेगी और एक बहुत अच्छा मौका होगा भारत के पास, क्योंकि पिछली बार चीन के साथ सेमीफाइनल में मुकाबला हुआ था, जिसमें चीन ने भारतीय लड़कियों को 4-0 से परास्त किया था। यानी इस बार भारतीय लड़कियों के पास मौका है इसका बदला लेने का और साथ ही साथ स्वर्ण पदक जीतने का। जरूर निगाह रखिएगा इस मैच पर। एशियाई खेलों में मुक्केबाजी भारत के लिए पदक कमाने वाला खेल रहा है। कुल पदकों के मामले में देखें तो 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। एथलेटिक्स, शूटिंग और कुश्ती के बाद पिछली बार 4 मेडल आए थे, 1 रजत और 3 कांस्य। तो भाई इस बार स्वर्ण की उम्मीद करें? जी बिल्कुल करें। क्यों करें ये जानते हैं मुदिता से।
0: बॉक्सिंग में भारत ने आज 2 कांस्य पदक हासिल किए। प्रिया घनघस ने महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में, वहीं कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में प्रिया चीन की यांग चेंगयू से 1-4 के स्प्लिट डिसीजन से हार गई। वहीं कपिल को उज्बेकिस्तान के तुराबेक खबीबुल्लायेव से हार का सामना करना पड़ा। लवलीना बोरगोहेन महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग के गोल्ड मेडल बाउट में पहुंच गई हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की नतालिया बोगदानोवा को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हराया। परवीन हुड्डा महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में और पुरुषों में अंकुश पंघाल 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहले ही पहुंच चुके हैं और 16 साल में पहली बार एशियन गेम्स के फाइनल में भारत के 1 से ज्यादा बॉक्सर्स होंगे।
1: स्क्वाश उन खेलों में है जिनमें भारत अपनी पहचान बना चुका है। सौरव घोषाल, हरिंदरपाल सिंह संधू, दीपिका पल्लिकल की विरासत नई पौध ने बखूबी संभाल ली है और ज्योत्सना चिनप्पा का अनुभव तो अभी भी साथ है। महिला और पुरुष दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। मुदिता बता रही हैं स्क्वाश के सितारों की कहानी।
0: पुरुषों और महिलाओं की स्क्वाश टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और इसके साथ ही मेडल भी पक्का हो गया है। डिफेंडिंग चैंपियन पुरुष टीम ने कुवैत को 2-0 से हराया। वीर चोटरानी ने 3-1 से जीतकर अच्छी शुरुआत दिलाई और अभय सिंह ने

0: सीधे गेम में जीत हासिल कर मुकाबला अपने नाम किया। पुरुष टीम का अगला मुकाबला मलेशिया से होगा। इसके पहले महिला टीम ने सिंगापुर को 2-0 से हराया। तन्वी खन्ना ने 3-1 और अनाहत सिंह ने 3-0 से भारत को जीत दिलाई। सेमीफाइनल में महिला टीम का मुकाबला हांगकांग से होगा।
1: टेनिस में आज उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले का। सेकेंड राउंड मैच में चाइनीज ताइपे की जोड़ी सू वी सी और चुन सिंह सेंग के विरुद्ध। दिन के अंतिम मुकाबले में उन्होंने सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से जीत दर्ज की। ऋतुजा भोसले पिछले खेलों में रोहन बोपन्ना के साथ जोड़ी बनाकर इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। यूकी आज इसके पहले भी कोर्ट में उतरे थे पुरुष युगल में दक्षिणेश्वर सुरेश के साथ। उनके सामने थे चाइनीज ताइपे के चेन जुई हो और यू सिया सू। यहाँ पर पहला सेट बहुत संघर्षपूर्ण रहा, 6-6 की बराबरी पर। उसके बाद टाई ब्रेकर और जिसमें 5-7 अंकों से वो हार गए, लेकिन दूसरे सेट में तो बिल्कुल रिदम ही खो बैठे। चौथे गेम में उनकी सर्विस ब्रेक की ताइपे की जोड़ी ने और 4-1 की बढ़त ले ली। भारतीय जोड़ी 3-6 से सेट और मैच हार बैठी। दक्षिणेश्वर सुरेश एकल में ताइपे के चुन सिन से हार गए थे 3-6, 4-6 से, लेकिन सुमित नांगल ने अपना विजय अभियान तीसरे राउंड में भी जारी रखा। उन्होंने उज्बेकिस्तान के सरगई फोमिन को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से परास्त किया। यानी टेनिस में इन दोनों पदकों की आस जीवित रखी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 28 साल में पहली बार ऐसा होगा कि पुरुष डबल्स में भारत को पदक नहीं मिला है। पिछले खेलों में टेनिस में मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक और पुरुष युगल में रजत पदक भारत के हिस्से में आया था। कुश्ती की स्पर्धाएं आज शुरू हो गईं और भारतीय उम्मीदें भी जवान हो उठी। पहला पदक भी आ गया पहले ही दिन, लेकिन कांस्य पदक था। कितनी बाउट्स लड़के ये कांस्य पदक आया, आइए जानते हैं मुदिता से।
0: मेंस ग्रेको रोमन कुश्ती में सुनील कुमार ने पुरुषों के 87 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। सुनील ने ब्रॉन्ज मेडल बाउट में फिलीपींस के कैलम जॉनस्टन को 9-0 से हराया। भारतीय पहलवान के लिए ये लगातार दूसरा एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल है। इससे पहले हांगझो में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता था और इसके साथ ही वो एशियाई खेलों में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रेको रोमन रेसलर बन गए हैं। महिलाओं में 68 किलोग्राम भार वर्ग में निशा दहिया रेपेशाज में दक्षिण कोरिया की ह्योन योंग पार्क से हार गई।
1: आज ही जूडो की स्पर्धाएं शुरू हुई। 3 दिन की स्पर्धा, 3 भारतीय खिलाड़ी, जिनमें से पहली आज मैट पर उतरी। विवरण के साथ मुदिता।
0: जूडो में 48 किलोग्राम भार वर्ग में अस्मिता डे अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच हार गईं। जूडो में 57 किलोग्राम भार वर्ग में यामिनी मौर्य और 70 किलोग्राम भार वर्ग में ताखी लाम्बम इनून गानबी के मुकाबले अभी बाकी हैं।
1: गोल्फ बड़ा संभ्रांत खेल माना जाता है। भारतीय उपस्थिति इसमें लगातार मजबूत होती जा रही है। कुल 6 गोल्फर हैं भारतीय दल में। आज महिला और पुरुष दोनों मुकाबले थे। इस क्यू के साथ रोहित भारद्वाज।
2: एशियन गेम्स 2026 में गोल्फ से भारत के लिए डे 14 पर अच्छी शुरुआत देखने को मिली है। विमेंस टीम इवेंट में भारत ने पहले राउंड के बाद 3 अंडर पार 137 के स्कोर के साथ संयुक्त छठा स्थान हासिल किया। प्रणवी शरत उर्स ने 4 अंडर 66 का शानदार स्कोर बनाया, जबकि अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने 1 अंडर 71 का कार्ड खेला। विमेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले में प्रणवी उर्स ने 4 अंडर पार 66 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने संयुक्त 18वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं मेंस टीम इवेंट में भारत 3 अंडर पार 137 के स्कोर के साथ संयुक्त 5वें स्थान पर है। जापान 9 अंडर पार 131 के साथ शीर्ष पर है। मेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले में सप्तक तलवार ने 4 अंडर पार 66 के स्कोर के साथ संयुक्त 3रा स्थान हासिल किया। वहीं वीर अहलावत और युवराज संधू 71 के स्कोर के साथ संयुक्त 23वें स्थान पर हैं। कल गोल्फ का दूसरा राउंड खेला जाएगा। 4 राउंड के बाद टीम और पुरुष और महिला स्पर्धाओं के इंडिविजुअल स्कोर के आधार पर मेडल डिसाइड होंगे।
1: और अब बारी सेपक टाकरों की। पुरुषों ने मायूस किया, महिलाओं ने मुस्कान वापस लाई। पूरी कहानी रोहित भारद्वाज से।
2: पुरुषों के क्वाड्रेंट मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लाओस को 2-0 से हराया। भारतीय टीम में अरुण, आकाश युमनाम, बॉबी कुमार, लोखन सिंह, राम कुमार शर्मा और माले मंगबा सिंह शामिल हैं। वहीं महिला क्वाड्रेंट मुकाबले में भारत का सामना वियतनाम से हुआ। इस मुकाबले में भारतीय टीम को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेपक टकराव एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी रैकेट के बिना पैरों, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों से गेंद को नेट के ऊपर से खेलते हैं। यही इसकी सबसे खास पहचान है। आज पुरुष टीम की जीत भारत के लिए महत्वपूर्ण परिणाम रही, जबकि महिला टीम ने भी कड़ी चुनौती पेश की।

0: 14 साइकिल सवार अपनी साइकिलों के साथ जापान पहुंचे हैं पैडल भाजने के लिए। ट्रैक स्पर्धाओं में उनकी साइकिलें कितना तेज भाग पाई बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
1: एशियन गेम्स में भारत की ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं के मुकाबलों में आज भारतीय साइकिलिस्ट डेविड बेकहम, एलकाटो चोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोनजाम ने पुरुष स्प्रिंट के क्वालिफिकेशन में हिस्सा लिया, जबकि सरिता कुमारी और कीर्ति रंगास्वामी महिला क्रीम के पहले दौर में उतरी। सरिता अपनी हीट में 12.423 सेकंड के समय के साथ पांचवें और कीर्ति 11.740 सेकंड के समय के साथ चौथे स्थान पर रहीं। दोनों उसके बाद रेपेचेज में पहुंची, जहां कीर्ति ने 11.720 सेकंड के साथ तीसरे और सरिता ने 11.978 सेकंड के साथ चौथा स्थान हासिल किया। पुरुष स्प्रिंट में रोनाल्डो सिंह और डेविड बेकहम ने भी प्रतिस्पर्धा की। रोनाल्डो ने एलिमिनेशन राउंड में 10.620 सेकंड का समय दर्ज किया, जबकि डेविड बेकहम ने 10.992 सेकंड का समय बनाया। दोनों अपने अपने एलिमिनेशन राउंड से आगे नहीं बढ़ सके और रेपेचेज में भी जीत हासिल नहीं कर पाए।
0: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एशियन गेम्स में अपेक्षाकृत नया खेल है। 2018 में जकार्ता पालेमबंग खेलों से इसकी शुरुआत हुई। स्पीड रेस की स्पर्धा में 15 मीटर की दीवार पर खड़ी चढ़ाई करनी होती है कम से कम समय लेते हुए। इन खेलों में पदार्पण कर रहे दीपू मल्लेश पुरुषों की स्पीड 4 में आज क्वालिफिकेशन में उतरे। 4 प्रयास में उन्होंने कई बार अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और 5.09 सेकंड के साथ 11वें स्थान पर रहे और क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। कल इसी प्रतियोगिता में लड़कियों में जोगा पूर्त ने क्वालिफाई किया था। आज वो क्वार्टर फाइनल में उतरी, तीसरे स्थान पर रही, लेकिन फॉल के कारण क्वालिफाई नहीं कर पाई। केनो में पानी के बहाव के बीच चप्पू खेलने और संतुलन साधने में भारतीय नाविक आज क्या कर गुजरे, आइए जानते हैं रोहित भारद्वाज से।
2: पुरुषों के कयाक सिंगल में भारत के प्रद्युम्न सिंह राठौड़ और हितेश केवट ने सेमीफाइनल में हिस्सा लिया। प्रद्युम्न सिंह राठौड़ ने 137.74 सेकंड के समय के साथ फाइनल में जगह बनाई, जबकि हितेश केवट 184.89 सेकंड के समय के साथ क्वालिफाई नहीं कर सके। फाइनल में प्रद्युम्न ने 125.21 सेकंड का समय दर्ज करते हुए छठा स्थान हासिल किया। महिला कनो सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने चुनौती पेश की। पल्लवी ने 211.77 सेकंड के समय के साथ फाइनल में जगह बनाई, जबकि रीना 269.99 सेकंड के साथ फाइनल में नहीं पहुंच सकी। फाइनल में पल्लवी जगताप को डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा। कैनो स्लैलोम में भारतीय खिलाड़ियों ने चुनौतीपूर्ण मुकाबलों में अपना प्रदर्शन आज दर्ज कराया।
0: अगर आप भी मोबाइल गेम्स के शौकीन हैं, तो लीग ऑफ लीजेंड्स ये नाम नया नहीं होगा आपके लिए। यहाँ ई स्पोर्ट्स की स्पर्धा में आज इसी खेल की स्पर्धा थी। भारतीय प्रदर्शन का आकलन रोहित भारद्वाज से।
2: एशियन गेम्स 2026 में लीग ऑफ लीजेंड्स के ग्रुप बी मुकाबलों में भारतीय टीम ने चुनौती पेश की। भारत को हांगकांग चाइना के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से हुआ, जहां भारतीय टीम को एक बार फिर 0-1 से हार मिली। भारतीय टीम में आकाश शांडिल्या, अहमद शाहिर इसरार, मिहिर रंजन, अक्षय शेनॉय, सानिध्या मलिक और राहुल बिश शामिल हैं। लीग ऑफ लीजेंड्स के ग्रुप स्टेज मुकाबले सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेले जा रहे हैं और टीमों का लक्ष्य अगले चरण में जगह बनाना है। इस स्पोर्ट्स में तेज फैसले, रणनीति और टीम वर्क सबसे अहम होते हैं और भारतीय खिलाड़ी इस बड़े एशियाई मंच पर अपने अनुभव को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: मुलिता बता रही हैं पदक तालिका की ताजा स्थिति।
3: कल के मुकाबले खत्म होने के बाद भारत मेडल टैली में 10वें स्थान पर था, लेकिन आज 4 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल के बाद भारत 7वें स्थान पर आ गया है। 10 गोल्ड, 21 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ भारत के कुल 60 पदक हो गए हैं। मेडल टैली में चीन पहले, जापान दूसरे और रिपब्लिक ऑफ कोरिया तीसरे स्थान पर है।
0: और अब कल के खेलों का आकलन शाहनवाज खान से।
4: एशियाई खेलों में कल का दिन भारतीय फैंस के लिए सुपर थर्सडे होने वाला है, जहां क्रिकेट और हॉकी के 2 बड़े मुकाबले होंगे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम अपना सेमीफाइनल मुकाबला श्रीलंका से खेलेगी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत का ये पहला वास्तविक मैच होगा, क्योंकि सभी 4 क्वार्टर फाइनल्स बारिश के कारण रद्द हो गए थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के मध्य मुकाबले होगी। भारतीय टीम इस एशियाई खेलों में अब तक अनडिफीटेड रही है। भारतीय टीम 2016 के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ एक भी मैच नहीं हारी है। कंपाउंड तीरंदाजी में पुरुष एकल वर्ग में गणेश मणिरत्नम, जबकि महिला एकल वर्ग में चिकिता तनिपार्थी गोल्ड मेडल जीतने के इरादे से उतरेंगे। दोनों वर्गों में भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम हांगकांग से, जबकि पुरुष टीम मलेशिया से भिड़ेगी।

0: वॉलीबॉल के क्वार्टर फाइनल में भारत की पुरुषों की टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। कुश्ती में 4 सोने के तमगे दांव पर होंगे, सुमित दलाल, अमन और नितेश कुमार ग्रीको रोमन वर्ग, जबकि मानसी अहलावत महिला कुश्ती में भारत की चुनौती पेश करेंगी। साइकिलिंग, निशानेबाजी और जूडो में भी भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ में होंगे।
1: तो ये बताते हुए कि 20वें एशियाई खेलों पर कल भी आकाशवाणी की कवरेज जारी रहेगी। सुबह 9:30 बजे से अपडेट्स सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा और 10:00 बजे ये हाइलाइट्स कार्यक्रम। तो अब मुझे अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, एडिटर विशाल कुमार और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: प्रिया,
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
0: मेरी भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ।
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: I'm not listening
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मर
0: जाए।
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: Okay, I'm not with
1: her. तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: Okay, that's it.

0: 안 돼. 안 돼, 안 돼. 아래 안 돼, 야.
1: एक बात बता मेरे यारा, मैं सोच सोच के हारा, ये दुनिया